0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:33 और 10 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ फिरोज। दोस्तों, कभी कभी आपने ये समझने की कोशिश ज़रूर की होगी, कई बार ऐसा हुआ होगा, आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं अपने, और अचानक ऐसा महसूस होता है कि चेहरा तो वही है लेकिन वक्त कितना बदल गया है। कुछ ऐसी ही है हमारी ज़िंदगी, कल की कुछ तस्वीरें याद बन जाती हैं, कुछ लोग दास्तान बन जाते हैं और कुछ लम्हे दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन वक्त हमें सिर्फ बदलता नहीं, बहुत कुछ सिखाता भी है। वो सिखाता है कि हर खुशी को जी भर कर महसूस करना चाहिए, जी भर कर जीना चाहिए, और हर रिश्ते की कदर करनी बेहद ज़रूरी है, और गुजरे हुए कल को बार बार पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो वक्त खराब गुजरा है उसको आगे हम ठीक कर सकें, क्योंकि जो बीत गया वो हमारी कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं है। आज का दिन अभी हमारे पास है और यही सबसे बड़ी नेमत है। तो अगर कोई पुरानी याद आज दिल में दस्तक दे तो मुस्कुराइए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए।

ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र पीछे मुड़कर देखने से नहीं, आगे की राह को उम्मीद से देखने से पूरा होता है। और अब ऐसे ही ख्यालात के साथ हम आगे बढ़ेंगे एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:41 और 12 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, जिसमें हम बातें करते हैं जिंदगी से जुड़ी हुई। आपके रास्ते में तमाम तरह की मुश्किलात आती हैं, तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, हम सब की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उन सब से डट कर मुकाबला करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में कितनी दूर निकल आए हैं? रास्ते बदलते रहे, लोग मिलते रहे, कुछ साथ चलते रहे और कुछ किसी मोड़ पर पीछे छूट गए, लेकिन सफ़र सफ़र हमेशा जारी रहा। शायद ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि रुकना नहीं है। हर मोड़ अपने साथ एक नया तजुर्बा लेकर आता है आपकी ज़िंदगी का। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी कदम भारी हो जाते हैं, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने दिल में उम्मीद बचा कर रखता है। अगर आज आपका सफ़र थोड़ा मुश्किल है तो घबराएं मत, हो सकता है यही रास्ता आपको उस मंजिल तक ले जा रहा हो जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था। बीते हुए कल को एक सबक की तरह जरूर याद रखें और आने वाले कल को एक उम्मीद की तरह देखें, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा कीमती वो सफ़र होता है जिसमें हम हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनते जाते हैं, कुछ नया सीखते जाते हैं, कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते हैं और ज़िंदगी मुसाफिर की तरह बस यूं ही आगे बढ़ती जाती है। तभी तो कहते हैं आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है।

मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़ेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त भोर सुहानी से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित LIC निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MDL रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे।

0: से देश सेवा के दूसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जनविश्वास तक। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष, ये केवल एक समय अवधि नहीं है बल्कि ये एक यात्रा है अनुभवों की, चुनौतियों की और प्रयासों की। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ

0: ये सोच नहीं थी, लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पहल की गई थी, बल्कि ये है कि इसके पीछे प्रशासनिक सोच क्या रही और जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं को, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या पहल की गई थी। और इन सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 25 वर्ष बहुत ही लंबा सफर होता है किसी भी नेता के लिए, इतने साल पूरा करना। तो अगर आप देखें इस दौरान शासन में और जवाबदेही में किस तरह का बदलाव आया, क्या सिर्फ ये टेक्नोलॉजी तक सीमित रहा या इसमें जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी?
1: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। तो मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए

0: वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 25 वर्ष बहुत ही लंबा सफर होता है किसी भी नेता के लिए, इतने साल पूरा करना। तो अगर आप देखें इस दौरान शासन में और जवाबदेही में किस तरह का बदलाव आया, क्या सिर्फ ये टेक्नोलॉजी तक सीमित रहा या इसमें जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी?
1: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए जमीन करीब 150 किलोमीटर एक शहर बनाने के लिए चाहिए थी, तो सारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। पर जब मैं गुजरात गया तो चीफ मिनिस्टर से जब मिला तो उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 की बात मत करो मेरे से, मैं तुमको 750 स्क्वायर किलोमीटर देता हूँ, तुम्हें बनाना है नया शहर तो जो कि आगे चल के सिंगापुर से भी अच्छा एक शहर बने उस तरह का। तो इस तरह धुलेरा शहर की शुरुआत वहाँ से हुई, फिर उसकी मास्टर प्लानिंग कराई, तो लगातार मैं गुजरात जाता रहा और मैं उसके बाद मैंने वाइब्रेंट गुजरात में भी 2 साल भाग्य लिया। मुझे ये लगा कि चीफ मिनिस्टर मोदी साहब बहुत विजनरी हैं और आगे की सोचते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, उस समय मैं सचिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ प्रमोशन का, तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया। फिर बाद में जब नीति आयोग में CEO बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया। और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं।
0: और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आप इतनी जगह गए तो उन्होंने आपको सुना, और प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई आता है वे उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं। सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है, आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट।
2: सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके की ओर बढ़ना है, यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें। मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है iGOT कर्मयोगी। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं। अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार iGOT कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में हैं, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अब तक iGOT पर 14,42,00,000 से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश iGOT प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।
0: प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है, 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है।
3: हम 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वो रोल तो देखते हैं, उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो जो जमीनी वास्तविकता है वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलते हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ, तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने ये की मुझे ध्यान में

0: जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल. और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगोव के प्लेटफॉर्म
1: जी
0: के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े, तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो.
1: जी
0: तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल, प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि वो अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो, 750, तो
1: जी
0: वो बड़े स्केल पर सोचते हैं. तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं. और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाबदेही या ट्रांसपेरेंस, पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, मतलब बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है, तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है, और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट. तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे, और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए,
1: जी
0: ये उनकी खासियत है. मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना, ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है. जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है.
1: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए शुरू किया गया आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
2: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जाए, उनकी चुनौतियों को समझा जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। इसी उद्देश्य से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। चिंतन शिविर में संबंधित मंत्रालय के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और दूसरे हितधारक एक साथ बैठकर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली दिक्कतों और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। हाल के वर्षों में कई मंत्रालयों ने ऐसे चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में समयबद्ध और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। यानी चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य है समीक्षा, संवाद और आगे की कार्य योजना।
1: भागीदारी की बात की जाए तो एक उनका प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो उसमें उन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्यों की और केंद्र की जो परियोजना है उनकी समीक्षा की जाती है, और उसमें छोटी से छोटी बात पर चर्चा की जाती है क्या किस स्तर तक पहुंची। सिर्फ ये नहीं कि रिपोर्ट्स देख ली और काम हो गया, नहीं, उसका जो वाकई जो जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है और कितना होना चाहिए उस पर भी चर्चा होती है। आपने 14 साल उनके साथ काम किया है अमिताभ जी, तो आपने किस तरह से ये फर्क महसूस किया है?
3: हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जो सड़क हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, ग्रिड हो, पानी के कनेक्शन हो, ये सारे के सारे जमीन पर जब आप जाते हैं तो लास्ट माइल पर प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवर रन होते हैं। 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट डेढ़ साल में कंप्लीट होना था वो

0: 10 साल 12 साल ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा। तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में हैं, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं, उसमें आधी से ज्यादा 80% तो चैलेंजेस जो हैं वो वहीं स्कीम्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं, जो 20-25, क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूंगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं, और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इम्प्रूवमेंट आया, तो इसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 कॉलेजी के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में, और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने, देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए यहाँ लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ, तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी,
1: बिल्कुल,
0: तो ये हुआ है
1: बिल्कुल। और जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए, इस टाइम तक ये पूरा होना है, और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है, और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं, तो इस सोच में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी?
2: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा, जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं, आप प्रगति का देख लीजिए, आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रिवेशन में
1: जी,
2: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है। वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
1: जी,
2: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है
1: जी, जी।
2: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशंस कितने हैं।
1: बिल्कुल,
2: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशंस है, सुरक्षा के डायमेंशंस है, हेल्थ के डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस है, या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है। तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना, कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही या नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनको तो 30-30, 35-35, 37 साल बाद कोई डैम्स, कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है।
1: बिल्कुल,
2: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ परिवार को योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया।
1: बिल्कुल,
2: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया। भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है। लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए।

0: आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है, और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब एक पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं, और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट।
1: बिल्कुल, जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां दिक्कत देखते थे, और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई। तो उनका जो सोचने का तरीका है, वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी, कि आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
2: एक कैबिनेट मीटिंग
1: जी
2: के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से और कहा कि चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए कि मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115 उनमें बदलाव लाना है।
1: जी
2: तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक
1: ठीक
2: बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलिए। और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तुम इसमें बदलाव करके दिखाओ। उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ। सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चरल आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, क्योंकि भी कई बार मीटिंग्स की। ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कॉम्पिटिशन किया, और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया। तो वहां की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहां का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया। और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे, तो हर एमएलए को, हर एमपी को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया। और इतने जोरों का कंपटीशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे। तो ये आउटकम बेस्ड जो इनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
1: जी।
2: तो बदलाव वो लिटरेसी में इंप्रूवमेंट आया, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इंप्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा। इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप थे, आज आप देखिए देश में करीब 3 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं। और इसकी वजह से जियो स्पेशल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया। और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे स्टार्टअप्स की वजह से हो। तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए, इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, ये किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है, ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है देश।
1: बिल्कुल, तो ये जो नजरिया है मतलब सोचने का, अब जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते थे ये मुश्किल क्यों है, वे कहते

0: कहते हैं इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है, तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है? केतकर जी
1: मानव के सारे आचरण में तो मन केंद्र
0: जी
1: में है ना। अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूं, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता इस सर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया।
0: जी
1: अब कहने के लिए तो ये नॉमिनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी जिले हो गया। पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं, ये तो हैंडीकैप है,
0: नहीं
1: वो अब
0: दिव्यांग
1: दिव्यांग हो गया,
0: जी
1: वो स्पेशल एबिलिटी उस शब्द में आ गई ना। तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में, ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रधानमंत्री जी, गवर्नेंस में मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए, सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट
0: जी
1: लिस्ट में है। तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो, यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ,
0: जी जी
1: तो वो भी एक अलग से ये थी, तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे, ये नहीं है, ये चिंतन है
0: बिल्कुल
1: हम पूरे भारत को लेकर। और उन्होंने एक उसमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था।
0: जी
1: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना
0: नहीं
1: नहीं होती
0: आती
1: है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी, सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ये भाव मन में जगाना, मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में वो आपने जो पूछा तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स आप अपने आप आते
0: ये
1: हैं।
0: हेल्दी कंपटीशन की बात होती है और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया। तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर परियोजनाओं पर काम करते थे।
2: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, तो उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले। तो हम लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं इसका और ये पोजिशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलके काम नहीं करें। तो फाइनेंस हो, टैक्स हो,
0: जी
2: कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके काम करना आवश्यक। तो हम लोग लगे बहुत और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था। तो जब ईपीएफओ के पास गए उन्होंने डिजिटल तो किया पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई भी रखेंगे, पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके, तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजिशन का जंप किया, किसी देश ने इतना नहीं। और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया है, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ। पर उनका, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए, और वही, इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया। तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको सरल किया जाए, और ये बहुत मेरे विचार से, जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पे बदलाव।
0: जी आप बिल्कुल सही कहा। और प्रफुल्ल जी, जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती हैं, अब जैसे नीति आयोग में भी बात है तो वो संतुलन कायम करना क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है, तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में उसे आप
1: उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनेमिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए, हम हमारे कार्बन इमिशन को लेकर जो टारगेट्स थे वो
0: जी
1: 2030 के
0: थर्टी के
1: टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं।
0: जी
1: तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता है।
0: जी
1: तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे

0: पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता, सुरक्षा, इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशली अभी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर कि आपको रिपोर्ट बना के देन। तो उस समय मुझे ध्यान में है जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। मुझे, क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का राजनेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है। पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है। तो ये सोच में ही बदलाव आया है ना कि भाई वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट, ये प्रोजेक्ट करने में हर सरकार को, हर राज्य को इस पर गर्व है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली है।
1: बिल्कुल, ऐसे सम्मेलन की बात हो ही रही है तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और इससे पहले जो G20 था, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है कि इस तरह का सम्मेलन आयोजित करना और खासकर जो ब्रिक्स में महाशक्तियों, भर्ती महाशक्तियों को एक साथ आना और ऐसे जो बिंदुओं पर आम सहमति बनाना, ये शायद आम बात नहीं थी।
2: तो देखिए, मैं G20 में प्रधानमंत्री जी का शेरपा रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बड़े, उस समय बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन का बड़ा, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। ये हालत थी कि उनके शेरपा लोग, यूरोप के जो शेरपा थे, रशिया के साथ बैठ के चाय पीने को भी तैयार नहीं थे और वो न चाइना के साथ बैठते थे न रशिया के साथ बैठते थे। और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो, सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो। तो हम लोगों ने करीब, हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाएं। तो हमने करीब 350 मीटिंग्स की हर स्टेट में गए। हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट हुआ, वहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया, वहां के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया, हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट, और हर स्टेट ने रोल प्ले किया, हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया। उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिया। और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई। ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था। ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे। भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की। तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप। और ये लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो, उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं। वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं, अगर विश्वास करते हैं फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको करके दीजिए। कोई नेता आप पे विश्वास कर रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है। तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है और उसको करके हम लोगों ने दिखाया, और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए।
1: बिल्कुल, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते हैं, यही उनकी सोच है। और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं, चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें, और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है। केतकर जी,
0: बिल्कुल देखिए, जैसे G20 की बात चली, किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा। G20 तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए। ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। मतलब आप देखिए कि जिसको कहा जाता है कि आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो। भारत आज हर जगह टेबल पर है, G20 में है, G7 में इन्वाइटेड मेंबर है, ब्रिक्स जैसे संस्थान में है, फिर इंडियन ओशन रिम में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा, हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, प्रधानमंत्री बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी बात कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन होते हुए निगोसिएशंस भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में शामिल होते हैं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है, वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा, वो इंटरनेशनल जब योगा डे

0: जब डिक्लेयर हुआ तो उस समय दिखा। तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है।
1: बिल्कुल। और अमिताभ जी, बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि जनहित से जन विश्वास की जो यात्रा है, वे आप किस तरह से देखते हैं?
2: देखिए, सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे 2047। और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने, न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक की हमारी GDP बढ़े, उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए। और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे
1: जी।
2: और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले, और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो, बिजली हो, घर हो, और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए। तो ये मेरे विचार से एक रोड मैप तैयार कर देना और हर व्यक्ति को समझना कि उसकी भी जिम्मेदारी है इस देश में बदलाव लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सही कहा। बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार नागरिकों की जरूरतों को कितने अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है। अमिताभ जी और प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: Adivas, a special program on the occasion of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi completing 25 years of public service. Delhi Kendra Nunchi Prasaram Vinnaru.
5: ఈ మధ్య నువ్వు చాలా రిలాక్స్డ్ గా కనిపిస్తున్నావు. ఎల్ఐసి యొక్క బీమా లక్ష్మి ప్లాన్ తీసుకున్నాను. చిన్న మొత్తాల పొదుపు పెద్ద రాబడిగా మారుతుంది. మనకి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కూడా ఉంటుంది. గ్యారంటీడ్ అడిషన్స్, 3 ఆకర్షణీయమైన ఆప్షన్స్ తో అడిషనల్ సర్వైవల్ బెనిఫిట్, ఇందులో ఆటో కవర్ కూడా ఉంది. ఈ ప్లాన్ ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసమే. ఎల్ఐసి హర్పల్ ఆప్కే సాత్.
6: జాగ్తే రహో జాగ్తే రహో.
7: సిర్ఫ్ జాగ్తే నహీ సజగ్ రహో.
6: సిర్ఫ్ రాతో మే నహీ జిందగీ కే హర్ మోడ్ పర్ సజగ్ రహనా హై.
7: अफवाहों से,
6: धोखाधड़ी से
7: जागरूक होना है अपने अधिकारों के प्रति,
6: अपने जिम्मेदारियों के प्रति.
7: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से.
6: सजग भारत,
7: जागरूक भारत,
6: सशक्त भारत.
7: सुनिए सजग भारत
6: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर. सजग भारत,
7: जागरूक बनिए,
6: सजग रहिए.
8: ఏది మామా తిన్నాను పోదామంటే ఏ బిర్యానీయో మండియో అనుకుంటే ఈ అజీ ప్లేస్ కు పట్టుకొచ్చినావు.
9: వింటేజ్ బార్స్ అన్ని ఇట్లనే ఉంటాయి మచ్చా, ఎప్పుడు తిన్నదే ఏం తింటావు? ఇక్కడ టమాటర్ కాట్ మస్త్ ఉంటది.
8: అదేంది మామా నేను ఎప్పుడు వినలేదు.
9: ఇదిగో ఆర్డర్ వచ్చేసింది, ముందు తిని చెప్పు ఎట్లుందో.
8: కిరాకుంది మామా, ఈ ప్లేస్లు ఈ డిష్లు ఎట్లా తెలుస్తాయి మామా నీకు? ఇవన్నీ
9: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.

प्रेमी है और थोड़ा मिस्टीरियस भी। कभी रात को आसमान की तरफ देखकर आपने सोचा है कि इतनी सारी स्टार्स हैं, लेकिन हम एक्चुअली यूनिवर्स में कहाँ हैं? या फिर मून को हम इतनी बार देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उसे ट्रूली ऑब्जर्व किया है? आज का दिन इसी क्यूरियोसिटी के नाम 19 सितंबर को दुनिया भर में लोग इंटरनेशनल ऑब्जर्व द मून नाइट के थ्रू मून को ऑब्जर्व करते हैं और लूना साइंस और एक्सप्लोरेशन के बारे में जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे मून की, स्टार्स की, प्लैनेट्स की, स्पेस एक्सप्लोरेशन की, एस्ट्रोनॉमी की और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे एंशिएंट इंडिया में आसमान और सेलेस्टियल बॉडीज को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और चलिए आसमान की तरफ एक इमेजिनरी जर्नी शुरू करते हैं। सुनते रहिए 101.9।

सेलेस्टियल बॉडीज को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और चलिए आसमान की तरफ एक इमेजिनरी जर्नी शुरू करते हैं। सुनते रहिए 101.9।

101.9. वेलकम बैक लिसनर्स। तो हाँ, सबसे पहले एक सिंपल सवाल, एस्ट्रोनॉमी होता क्या है? एस्ट्रोनॉमी बेसिकली है यूनिवर्स में मौजूद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और फिनोमिना का साइंटिफिक स्टडी, मतलब स्टार्स क्या हैं, प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, मून अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व करता है, गैलेक्सीज क्या होती है, ब्लैक होल्स क्या क्या होता है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने वाली साइंस है एस्ट्रोनॉमी। और एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस भी है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी सेम नहीं है। एस्ट्रोनॉमी इज अ साइंस दैट स्टडीज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस, एंड एस्ट्रोलॉजी ऑन द अदर हैंड स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजिशन को ह्यूमन लाइफ और इवन से रिलेट करती है। तो दोनों के नाम सिमिलर है लेकिन कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट है। सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो।

0: दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं कमल किशोर बड़ाई और कौशिक रॉय। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये दो दिनों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन का उद्देश्य आज विश्व के समक्ष उपस्थित गंभीर पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी चुनौतियों पर व्यापक रूप से संवाद करना है, विचार विमर्श करना है और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के लिए एक प्रतिष्ठित वैश्विक मंच उपलब्ध कराना है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के न्यायिक और पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अन्य प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस सम्मेलन की विभिन्न गतिविधियों का पूरा विवरण हम आप तक पहुंचाने के लिए मैं हूं आपका दोस्त कमल किशोर बड़ाइक और मेरे साथी हैं कमेंटेटर कौशिक रॉय। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और उससे निपटने की क्षमता, सर्कुलर इकोनॉमी, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, सतत ऊर्जा समाधान समेत कई विषयों पर चर्चा होगी। तकनीकी सत्रों में जलवायु न्याय, पर्यावरण कानून एवं शासन, वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वन संरक्षण जैसे पुनर्स्थापन जैसे कई विषय शामिल हैं।
2: नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑफ द conference that has been organized by the National Green Tribunal, India's apex and specialized statutory body, which has been established to handle environmental matters. And the conference is on the future of environment and climate dynamics. This two-day conference will be inaugurated by the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, in just a short while from now. And now the conference has been addressed by the Honorable Attorney General for India, Sri R. Venkat Ramani.
3: As far as making and building our lives is concerned, Indian spiritual thought had realized and underscored the respect long ago. We just need a global common good environmental regulatory regime on the use of our natural resources beyond the pious declarations, where minimal rules on do's and don'ts, on common economic conduct and common rules of enforcement should prevail. Disasters like what happened in Nepal are grim reminders

0: 101.9.
1: Well, welcome back, listeners. You are listening to Akashvani 101.9 FM Rainbow. तो अब एक इमेजिनेशन करते हैं. आप टेरेस पर खड़े हैं, लाइट्स ऑफ, फोन साइड में, और ऊपर देखा तो स्टार्स. एक स्टार, दो स्टार, नहीं नहीं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. और सडनली एक थॉट, क्या हम यूनिवर्स में अलोन हैं? क्या किसी और प्लैनेट पर भी लाइफ हो सकता है? क्या किसी और सिविलाइजेशन के लोग भी किसी प्लैनेट से हमारी अर्थ को देख रहे होंगे? साइंस के पास अभी इन क्वेश्चंस के कंप्लीट आंसर्स नहीं है, और शायद इसी मिस्ट्री की वजह से स्पेस इतना फैसिनेटिंग है. अब बात करते हैं आज की स्पेशल गेस्ट की. ऑफ कोर्स गेस्ट स्टूडियो में नहीं है, लेकिन हर रात आसमान में जरूर मिल जाता है. आवर मून, मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, और मून हमसे अप्रोक्सीमेटली 3.84 किलोमीटर्स दूर में. सन के कंपैरिजन में मून बहुत छोटा है, लेकिन अर्थ से हमें वो काफी बड़ा और ब्राइट दिखता है. क्यों? बिकॉज मून सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है. मून खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वो बेसिकली सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को जारी रखते हैं हमारी अगली ट्रैक के बाद. सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो. रेनबो के साथ है लाइफ है रंगीन.

101.9. Well, welcome back, listeners. तो हाँ, अब तक हम बात करते आ रहे हैं एस्ट्रोनॉमी की, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वुमन की जिन्होंने सिर्फ आसमान को देखा नहीं बल्कि आसमान के पार जाकर दुनिया को देखा। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने स्विमिंग से लेकर फ्लाइंग तक, नेवी से लेकर नासा तक और अर्थ से लेकर स्पेस तक का सफर तय किया। नाम है सुनीता विलियम्स। 19 सितंबर 1965 को हुई USA में बॉर्न सुनीता विलियम्स आज दुनिया भर में एक इंस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट के रूप में जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, सुनीता विलियम्स की स्टोरी सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है ड्रीम्स की, डिसिप्लिन की, करेज की और कभी गिव अप ना करने की। हम जानेंगे सुनीता विलियम्स की वो कहानी जहां हर चैलेंज के बाद एक नई अचीवमेंट मिली।

Well, that was an amazing popular beat, Kalyani. दोस्तों, सुनीता विलियम्स का जन्म यूक्लिड ओहियो में हुआ था. उनके फादर डॉक्टर दीपक पांड्या इंडियन ओरिजिन के थे और उनकी मदर बोनी पांड्या सोल्वियन अमेरिकन बैकग्राउंड से थी. सुनीता का होम टाउन नीदम माना जाता था और स्कूल के बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी ज्वाइन की.

0: और यही से उनकी लाइफ ने एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन लेना शुरू किया। 1987 में उन्होंने नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की। लेकिन सुनीता के ड्रीम्स सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं थे, उन्होंने नेवी ज्वाइन की और फिर बनी एक नेवल एविएटर। सोचिए, एक यंग वुमन हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रही है, मिलिट्री मिशंस का पार्ट बन रही है और डिफिकल्ट सिचुएशंस में डिसीशंस ले रही है। उन्होंने नेवी में डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई किए और मोर देन 3000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस गेन किया। नासा के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने करियर में 30 से ज़्यादा डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई किए। यानी स्पेस में जाने से पहले ही सुनीता विलियम्स ने स्काई के साथ अपनी दोस्ती शुरू कर दी थी, है ना बहुत इंस्पायरिंग। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक।
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్
2: తక తడక భడక దిల్ ధడక ధడక గయా అటక అటక నా మానా లట గయి రే ఉలజ్ కై కసె కోయి హట గయా మన్ సే లిపట అంజానా వో నీల అంగ సా రూప రంగ లజ సగల సమాధి ప్రేమ భంగ చడి అంగ అంగ।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back, दोस्तों. तो हाँ, 1998 ये साल सुनीता विलियम्स की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के लिए सेलेक्ट किया, लेकिन एस्ट्रोनॉट बनना सिर्फ एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने का नाम नहीं था. ट्रेनिंग एक्सट्रीमली डिमांडिंग थी. स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स, साइंटिफिक ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, सर्वाइवल ट्रेनिंग, वाटर सर्वाइवल, वाइल्डनेस सर्वाइवल और एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, हर स्टेज पर डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत थी. सुनीता जी ने ट्रेनिंग कंप्लीट की और नासा में अपनी जर्नी स्टार्ट की. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के दौरान सुनीता विलियम्स ने अंडर वाटर हैबिटेट में भी काम किया. नासा के नीमो मिशन में वो एक्वेरियस अंडर वाटर हैबिटेट में 9 डेज रही थी. मतलब स्पेस में रहने से पहले उन्होंने समुंदर के नीचे रहकर भी ट्रेनिंग ली और शायद इसीलिए उनकी स्टोरी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है. अगर डेस्टिनेशन एक्स्ट्रॉर्डनरी है तो प्रिपरेशन भी एक्स्ट्रॉर्डनरी होनी चाहिए. है ना अमेजिंग बात. तो सुनते रहिए FM Rainbow 101.9. रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन.

0: 101.9 साथ में जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को अक्सर कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि भारत G20 का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेरिस में आयोजित COP21 शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा में गहराई से निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपालों को इन केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने के

0: स्थिति में परिषद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा परिषद में कहा, समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों या मनमाने दखल का अवसर नहीं पड़ना चाहिए। जापान के आइची नगोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, inaugurating the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. Mr. Modi said that developing countries have often been unfairly held responsible for carbon emissions. He highlighted that India is the only country in the G20 that has successfully fulfilled the commitments made at the COP21 summit in Paris ahead of schedule. The Prime Minister said over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment.
2: Carbon emission ki zimmedari galat tarike se vikasshil deshon par dali jati rahi hai. Jabki aitihasik sachchai ye hai, aaj bhi प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
1: Prime Minister Modi said India is working with the rest of the world and setting new standards for environmental protection through initiatives such as the International Solar Alliance, Global Biofuels Alliance, International Big Cat Alliance and Mission Life. Mr. Modi said that over the past 12 years, India has made extraordinary progress in every field related to the environment. The Prime Minister said India's major focus has been on renewable energy and played a significant role in environmental protection. On the occasion, Chief Justice of India Surya Kant said the idea of preserving the earth existed in the country much before the emergence of environmental tribunals, regulatory mechanisms and compliance frameworks. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It has brought together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More from our correspondent.
3: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Defence, among others. With the 20th Rozgar Mela, a total of about 12,75,000 youth will have received appointment letters. The Rozgar Mela reflects the government's continued focus on creating employment opportunities for the youth and ensuring their greater participation in the country's development journey. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: The Ministry of Rural Development will begin training nearly

वेलकम बैक लिसनर्स। दोस्तों, सुनीता विलियम्स ने अपनी करियर में टोटल 608 डेज स्पेस में स्पेंड किए। उन्होंने 3 स्पेस मिशंस कंप्लीट किए और नासा के जनवरी 2026 बायोग्राफी के अकॉर्डिंग उन्होंने टोटल 62 आवर्स 6 मिनट्स स्पेस वॉक्स कंप्लीट किए ओवर 9 स्पेस वॉक्स। ये नंबर्स इम्प्रेसिव है, लेकिन मुझे लगता है नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके पीछे का जर्नी। एक गर्ल जो साइंस पढ़ती है, नेवी ज्वाइन करती है, एयरक्राफ्ट फ्लाई करती है, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग करती है, स्पेस में जाती है, स्पेस वॉक करती है, मैराथन रन करती है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कमांड करती है और फिर एक डिफिकल्ट स्पेस मिशन की अनएक्सपेक्टेड एक्सटेंशन को भी फेस करती है। This is not just a space story. This is a story about resilience. दोस्तों, हम सब के ड्रीम्स होते हैं। किसी का ड्रीम सिंगर बनना है, किसी का टीचर, किसी का एंटरप्रेन्योर, किसी का आर्टिस्ट, किसी का डॉक्टर और किसी का बस इतना ड्रीम होता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना चाहती हूँ। कभी कभी हम अपने ड्रीम्स को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मैं कर नहीं पाऊँगा, बहुत डिफिकल्ट है, लोग क्या कहेंगे, टाइम निकाल गया। लेकिन सुनीता विलियम्स की जर्नी एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर है। स्काई इज नॉट द लिमिट बिकॉज द स्काई इटसेल्फ कैन बिकम योर स्टार्टिंग पॉइंट। आपको हर दिन एक चेंज लीप नहीं लेना है, बस एक स्मॉल स्टेप, फिर एक और, फिर एक और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, वाह, मैं कितना दूर आ गया। तो दोस्तों, 19 सितंबर को हम विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे टू सुनीता विलियम्स जी। है ना बहुत इंस्पायरिंग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रैक की ओर।

101.9. Welcome back, listeners. You are listening to Akashwani 101.9 FM Rainbow. 19th September. क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी डेट जिसे इंडियन क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल सकते। आज से कई साल पहले एक इंडियन बैट्समैन ने सिर्फ 6 बॉल्स में 6 सिक्सेस लगाकर हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। नाम था युवराज सिंह। सोचो, बॉलर सामने है, स्टेडियम में थाउजेंड्स ऑफ पीपल, प्रेशर अपने पीक पर और बैट्समैन के बैट से एक के बाद एक सिक्स। आज हम रिवाइंड करेंगे उस लेजेंडरी मोमेंट को। यह था 2007 इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेल रहा था। इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच था और इंडियन इनिंग्स में एक वक्त आया जब युवराज सिंह ने डिसाइड कर लिया कि आज बॉल बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। इंग्लैंड के बॉलर थे स्टॉट बोर्ड। बोर्ड यंग फास्ट बॉलर थे और उनके सामने थे युवराज सिंह, एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और एक्सप्लोसिव बैट्समैन। मैच का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी इंटेंस था और फिर आया वो ओवर। फर्स्ट बॉल सिक्स, सेकेंड बॉल सिक्स, थर्ड बॉल भी सिक्स और फोर्थ बॉल सिक्स, फिफ्थ बॉल सिक्स। अब सिर्फ एक बॉल बाकी थी। स्टेडियम में सबको पता था अगर युवराज ने सिक्स बॉल भी सिक्स कर दी तो हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा। सिक्स डेलवरी, युवराज ने शॉट मारा और बॉल सीधा बाउंड्री के पार। सिक्स बॉल सिक्स सिक्सेस, एक ओवर 36 रन्स और युवराज सिंह बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट सिक्स सिक्सेस इन एन ओवर इन अ T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप मैच। इमेजिन कीजिए, एक बैट्समैन के पास सिर्फ सिक्स अपॉर्चुनिटीज और वो 6 के 6 बॉल्स को स्टेडियम के बाहर बेच देता है। उस मोमेंट में युवराज सिर्फ रन्स नहीं बना रहा था, वो एक मोमेंट क्रिएट कर रहे थे। दोस्तों, अभी आप सुनेंगे नमस्ते हेलो आदाब में एक खास और इंस्पायरिंग मुलाकात। कहते हैं हौसला वो होता है जो मुश्किलों को रास्ता बना देता है और जब जुनून के साथ मेहनत जुड़ जाए तो वही सफर एक मिसाल बन जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही चैंपियन से जिन्होंने अपने टैलेंट, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के दम पर वर्ल्ड पैरा टेबल टेनिस के मैच पर अपनी एक खास पहचान बनाई है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ है हितेश डोलवानी, वर्ल्ड पैरा टेबल टेनिस चैंपियन जी। उनसे खास बातचीत करेंगी हमारी आरजे जयश्री जी, जहाँ वो जानेंगे उनके सफर के बारे में, उनकी चैलेंजेस, उनकी विक्ट्रीज और वो जज्बा जो उन्हें हर बार टेबल पर और जिंदगी में आगे बढ़ाते ही हिम्मत देता है। तो बने रहिए नमस्ते हेलो आदाब के साथ एफएम रेनबो 101.9 पर। रेनबो के साथ है लाइफ ए रंगीन। इस गाने के बाद अब आप सुनिएगा हितेश डोलवानी से आरजी जयश्री जी की खास बातचीत। सुनते रहिए 101.9 FM।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listeners. You are listening to Akashvani 101.9 FM Rainbow. और Hello Rainbow का वक्त हो चुका है. तो हाँ, आज का टॉपिक ये है कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और आप उसे कैसे मनाते हैं और उससे जुड़ी यादें आप हमसे शेयर कर सकते हैं. आप हमसे जुड़ने के लिए कॉल कर सकते हैं 0402323-0030, 0402323-4821 और 0402970-4715 पर. सुनते रहिए 101.FM रेनबो, क्योंकि रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन.

0: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: वेल वेलकम बैक लिसनर्स. हमारी पहली कॉलर से बात करने का वक्त हो चुका है. हेलो.
2: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम
1: जी. गुड आफ्टरनून, आपका नाम?
2: ओम शांति जी. नमस्कार मैडम, मेरा नाम पोलसिटी मेहरबाबा जुबील से बात कर रहा हूँ मैडम.
1: जी जी, स्वागत है आपका हेलो रेनबो में.
2: फेस्टिवल का तरफ से दिया ना मैडम आज ट्रैफिक को?
1: जी हाँ
2: जी, मैं आई तो सुनते रहता मैडम, सुबह 6 बजे से रात को 9:30 तक सुनते रहते मैडम. तेलंगाना सब कुछ फोन इन प्रोग्राम सब कुछ सुनते रहते मैडम.
1: जी बहुत अच्छी बात है.
2: हम लोग को आंध्र लड़का है मैडम. मैं हम लोग बोले तो संक्रांति बहुत बड़े ये पर्व मैडम.
1: जी जी,
2: संक्रांति को सब लोग जाते मैडम. ये साल मैडम December 16 को विवी लक्ष्मी मैडम का प्रोग्राम सुन के मैडम December 30 को प्लेन में गए मैडम गाँव को.
1: जी
2: ఇంకా సంక్రాంతి కు వదరే రూప్ గయ మేడం. సంక్రాంతి పోనే 20 గాంవ్ సే ఆయ మేడం.
1: ఓకే,
2: సంక్రాంతి బోల్కే ఇతనా ఫేమస్ మేడం. ఇతనా ఫోర్ సానకెలియే సున్నుండల బోల్తే పోకుండల బోల్తే
1: బోల్తే
2: సబ్ కుచ్ బోల్తే సబ్ కుచ్ బనాతే మేడం. హమారా ఫేమస్ క్యా బోలేతే మేడం, మురగా మొలం మేడం. మురగా కు కత్తి బనాకే లడాయి కట్టే మేడం. ఏ తీన్ దిన్ సంక్రాంతి కా భోగి కా దిన్ పెద్ద పండుగ దిన్ కనుమ దిన్ లడాయి హోతా మేడం.
1: జీ జీ,
2: बहुत अच्छा रहता मैडम देखने के लिए.
1: जी जी, बहुत धन्यवाद.
2: सब लोग ऐसा नहीं ना, सब लोग हैदराबाद में आंध्र वाला संक्रांति को सब लोग चला जाते मैडम, ये मुर्गा का लड़ाई देखने के लिए.
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू फॉर कॉलिंग.
2: जी जी मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू.
1: वेल, वी विल हैव अ नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
3: हेलो, वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैडम. श्रीनिवास राव मलकपेट मैडम.
1: जी जी, नमस्कार जी. श्रीनिवास जी, आपका हेलो रेनबो में स्वागत है. आज आपका आज आपने टॉपिक सुना है?
3: नहीं सुने मैडम.
1: जी जी, आज आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और आप उससे जुड़ी कुछ यादें आप हमसे शेयर कर सकते हैं?
3: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो मेरा तो हमारा मेन फेस्टिवल क्या हमारे को दशहरा.
1: जी,
3: दशहरा को जो है सो घर में क्या है ये 11 डेज का दिया लगाते हैं.
1: अच्छा जी.
3: वो बगर भुजे उसको 11 दिन उसको हम हिफाजत से उसको ये करते हैं. 10 दिन भी सुबह शाम आरती करते हैं. वो तो क्या है, वो तो किसको छिए बगर ये करे बगर पूरा बहुत ही रिजिड फैमिली है हमारा. तो कंपलसरी 11 डेज तक जो है उसको अच्छा हिफाजत से उसको पकड़ के रखे पकड़ भुजे तो चलाते हैं.
1: जी, बहुत अच्छी बात है.
3: घी का दिया रहता है तो उसमें क्या है, वो तो सब हो जाने के बाद क्या करते हैं, शाम में जो है सो देवल को जाते हैं. देवल को जाने के बाद वहाँ ये जम्मी चट्टू जो रहता है वो वहाँ पर जाते हैं. वो हम बाहर से लाते हैं, ला के लगाते हैं. पूरे महल्ले वाले पूरे आके उसके पूरा फिरते हैं. गोल फिर के लगाने के बाद उसको जो है पूरा वो चांदी सोना जो बोलते ना मैडम.
1: जी जी,
3: तो वो पूरा सब बड़े लोगों को सबको देते हैं. तो उसको ये कर लेने के वास्ते देते हैं.
1: जी,
3: तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. वो जम्मी चट्टी क्या है, वो
1: yes.
3: तो पांडव लोग 12 साल के बाद 13वीं साल में उनका एमिनेशन जो है तो वो झाड़ के ऊपर लगाते हैं.
1: जी,
3: तो वही झाड़ जो है तो जम्मी चट्टू है. तो उसीलिए उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है. तो वैसा उसको ला के लगा के उसको पूजा करके शर्मा समिति धनुर्धारी बोल एक श्लोक है, वो श्लोक बोल के उसके ऊपर पूरा तोड़ के वो इसका पत्ता जो है सब लोगों को

0: जी
1: देके,
0: जी जी
1: बड़े लोगों को देके आशीर्वाद देके हम पूरा काम चलाते हैं,
0: थैंक यू
1: अपना
0: सो
1: उनको भी
0: मच
1: जलाते हैं,
0: जी,
1: तो
0: थैंक यू
1: ऐसा
0: फॉर
1: हमारा
0: कॉलिंग।
1: सिस्टम बहुत ही अच्छा चलता है। थैंक
0: जी, थैंक यू फॉर
1: यू, थैंक
0: कॉलिंग, बहुत अच्छी बातें
1: थैंक
0: कही है आपने, थैंक यू, थैंक
1: यू माँ, थैंक यू वेरी
0: यू
1: मच माँ,
0: जी। हाँ,
1: थैंक यू।
0: वेल वेल कंटिन्यू द शो विथ आर नेक्स्ट ट्रैक। सुनते रहिए 101.9 FM रेनबो, रेनबो के साथ है लाइफ है रंगीन।

0: Well, that was an amazing song by from the movie The Bug. Now it's time for our next caller. Hello.
1: हरि ओम।
0: हरिओम जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम विलास पेनुरकर है, नल्ला कुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ।
0: जी विलास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो रेनबो में. आप
1: आभारी हूँ।
0: जी हाँ, आज का टॉपिक आपने सुना है?
1: हाँ जी, सुना है।
0: जी बताइए.
1: आज के विषय पर बोलना चाहूंगा। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे त्योहार

वेल दैट वॉज एन अमेजिंग सॉन्ग फ्रॉम द मूवी बॉडीगार्ड। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी सारी बातें की है एस्ट्रोनॉमी के बारे में, सुनीता विलियम्स जी के बारे में, उनकी इंस्पायरिंग जर्नी और स्टोरी सुनी है, और यस युवराज सिंह के 6 सिक्सेस के बारे में भी हमने सुना है। तो हाँ आज आज के शो में मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपसे जुड़ने वाली है लकी जी, आरजे लकी जी, विद जश्नी हैदराबाद और ढेर सारी बातों के लिए। तो हाँ आज के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ, पर आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो, क्योंकि रेनबो के साथ है लाइफ है रंगीन।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:30 हो रहे हैं और अब पेश खिदमत है आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: देती है। ऐसे में उम्मीद ही वो मरहम है जो जख्मों को भरती है। नफ्सियात दानों का कहना है कि जो मरीज तंदुरुस्त होने की उम्मीद रखते हैं वो मायूस मरीजों के मुकाबले में बहुत जल्द सेहतियाब हो जाते हैं। उम्मीद इंसान को हालात से लड़ना सिखाती है, ना कि हार मानना। उम्मीद पर अल्लामा इकबाल का ये पैगाम मुझे याद आ रहा है। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को हमेशा उम्मीद और खुदी का दर्ज दिया है। इनके नज़दीक ना उम्मीदी मौत है और उम्मीद जिंदगी की अलामत है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। उम्मीद वो सहारा है जो डूबते हुए को किनारे तक ले जाता है। हमें चाहिए कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मजबूत सोच अपनाएं और अच्छे की उम्मीद रखें। याद रखें, जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक उम्मीद है इंसान कभी हार नहीं सकता। जदीद नफ्सियात के मुताबिक उम्मीद सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक दिफाई निज़ाम है। जब इंसान जहनी तनाव या डिप्रेशन का शिकार होता है तो उम्मीद उसे दोबारा खड़ा होने की हिम्मत देती है। पुरउम्मीद रहने वाले लोग जिस्मानी तौर पर ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि इनका मुदाफ़ियाती निज़ाम बेहतर काम करता है। उम्मीद इंसान को मायूसी के अंधे कुएं में गिरने से बचाती है। नाउम्मीदी इंसान की सलाहियतों को जंग लगा देती है। जब इंसान ये सोचने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वो कोशिश करना छोड़ देता है। नाउम्मीदी एक ऐसी दीवार है जो सामने मौजूद रास्तों को भी छुपा देती है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म अपनी हिम्मत हार देना है, क्योंकि हिम्मत हारने वाला जीतने से पहले ही शिकस्त खा जाता है। खाली उम्मीद लगाना ख्याली पलाव है। जी हाँ, कुछ लोग उम्मीद लगाकर मेहनत से बचते हैं, जबकि हकीकी उम्मीद वो है जिसके साथ अमल जुड़ा हो। एक तालिबे इल्म इम्तिहान में कामयाबी की उम्मीद तभी रख सकता है जब वो मेहनत करे। हकीकी उम्मीद इंसान को हाथ पर हाथ रखकर बैठने नहीं देती बल्कि उसे दौड़ने पर मजबूर करती है। उम्मीद एक नक्शा है और अमल उस नक्शे पर चलने का नाम है।
1: सामीन, उम्मीद पर गुफ्तगु करते हुए एक बात हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में मुश्किलात का आना हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन उन मुश्किलात के सामने हमारा रवैया ज़रूर हमारे इख्तियार में। मायूसी हमें रोक सकती है लेकिन उम्मीद हमें दोबारा कदम बढ़ाने का हौसला देती है। बस ये ज़रूरी है कि हमारी उम्मीद सिर्फ इंतज़ार न बन जाए बल्कि उसके साथ मेहनत, हौसला और अमल भी शामिल हो। तो आइए, हालात जैसे भी हों, दिल में उम्मीद का चिराग रोशन रखिए, क्योंकि जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक नए रास्तों की गुंजाइश बाकी है।

सामिन, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और अब वक्त हुआ चला है हमारे दिलकश, यादगार और मौसीकी से सजी महफिल गीत सुरीले गाता जागा। मौसीकी वो ज़बान है जो दिलों के फासले मिटा देती है, एहसासात को नगमों में ढाल देती है और ज़िंदगी के हसीन लम्हों को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। यही वजह है कि दुनिया की हर तहजीब में मौसीकी को खुशी, मोहब्बत और उम्मीद की अलामत समझा जाता है। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं खूबसूरत हिंदी फिल्मी नगमों का एक मुंतखब गुलदस्ता, जहां हर गीत अपने अंदर एक कहानी, एक एहसास और एक याद लिए हुए। आज की हमारी खसूसी पेशकश का उन्वान है दिल की बात गीतों के साथ, यानी वो बातें जो कभी हम किसी से कह नहीं पाते, वो जज्बात जिन्हें अल्फाज का लिबास नहीं मिलता, और वो यादें जो दिल के किसी कोने में खामोशी से बसी रहती हैं।

आज यही एहसासात गीतों के जरिए आप तक पहुंचेंगे। तो आप जहां कहीं भी हैं हमारे साथ रहिए, क्योंकि अगले चंद लम्हों में हम कभी मोहब्बत की बात करेंगे, कभी यादों की, कभी जुदाई की, और कभी उन खूबसूरत रिश्तों की जो हमारी ज़िंदगी को माना देते हैं।

समीन, मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे शायद दुनिया का कोई भी लफ्ज़ मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकता। मोहब्बत कभी एक नज़र से शुरू होती है, कभी एक मुस्कुराहट से, कभी किसी की आवाज़ दिल में उतर जाती है और कभी किसी की मौजूदगी हमारी पूरी दुनिया बदल देती है। दिलचस्प बात यह है कि मोहब्बत का आगाज़ अक्सर खामोशी से होता है। इंसान कुछ कहता नहीं, मगर दिल बहुत कुछ कह रहा होता है। आंखें कुछ तलाश करती हैं, दिल किसी के इंतज़ार में धड़कता है और एक मामूली सी मुलाकात भी यादगार बन जाती है। फिल्मी गीतों ने मोहब्बत की उसी कैफियत को निहायत खूबसूरती से पेश किया है। कभी गीत पहली मुलाकात की खुशी बयान करता है, कभी दिल की बेकरारी, और कभी उस शख्स का जिक्र करता है जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी सी महसूस होती है। कभी लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं एहसास बयान करने में, कभी लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं एहसास बयान करने में, तब एक गीत ही काफ़ी होता है दिल की बात कहने में। तो आइए दिल की बात गीतों के साथ की इस खूबसूरत कड़ी में मोहब्बत की पहली धड़कन को महसूस करते हैं और सुनते हैं एक ऐसा दिलकश नगमा जो शायद आपको भी अपनी किसी खूबसूरत याद में ले जाए। आइए सुनते हैं।

सामीन, आप सुन रहे हैं आरजे मशकूर अहमद के साथ आकाशवाणी हैदराबाद का प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। और इस वक्त हमारी खसूसी पेशकश दिल की बात गीतों के साथ जारी है। मोहब्बत और ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि कुछ लोग हमारे ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं, मगर हमारी यादों से कभी दूर नहीं होते। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनके साथ गुजारा हुआ कोई छोटा सा लम्हा भी दिल में महफूज रह जाता है। कभी ऐसा होता है कि हम किसी जगह से गुजरते हैं और अचानक कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। कभी कोई खुशबू, कोई तस्वीर और कभी कोई गीत हमें बरसों पीछे ले जाता है। कुछ लोग दिल में इस तरह उतर जाते हैं, कुछ लोग दिल में इस तरह उतर जाते हैं कि फासले बढ़ जाएं तो भी याद आते हैं। तो आइए आज का अगला नगमा इसी उसी खास शख्स, उसी खूबसूरत याद और उसी एहसास के नाम करते हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद दिल में जिंदा रहता है। आइए सुनते हैं।

सामीन, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं आरजे मशकूर अहमद के साथ गीत सुरीले गाता जा, जिसमें आज हम पेश कर रहे हैं दिल की बात गीतों के साथ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। कभी शर्म रोक देती है, कभी हालात, और कभी ये खौफ के सामने वाला हमारे दिल की बात समझेगा भी या नहीं। मोहब्बत की दुनिया में ऐसी ही जज्बात को अनकही मोहब्बत कहा जा सकता है।

आंखें बहुत कुछ कहती हैं, खामोशी बहुत कुछ बयान करती है, मगर जबान खामोश रहती है। वो बात जो लबों तक आ न सकी, वो बात जो लबों तक आ न सकी, एक गीत ने आकर वो कह दी। फिल्मी गीतों की यही खूबसूरती है कि वो हमारे खामोश एहसासात को भी आवाज़ दे देते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो शायद आपके दिल में छुपी किसी खामोश बात को भी लफ्ज़ दे दे। आइए सुनते हैं।

0: एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
1: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था, जहां एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास्ट किया।
0: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में दो ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
1: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई, तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था, जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के तीन कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे, तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया। और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
2: To each and every one of you, the entire continent is behind you. Give everything you have, hold nothing back. The impact of what you achieve here will stretch far beyond any medals or performances. Throughout our continent, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible

0: what can be achieved when we push the limits of human potential, and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
1: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होनेहोन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
2: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली। एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
1: सबसे पहले बात टेक बॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेक बॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेक बॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेक बॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांग, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेक बॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेक बॉल दल में क्विम्सी डिसूजा, मोहम्मद अनस इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विम्सी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वार्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की ओएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विम्सी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विम्सी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
2: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसीलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी, मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की

0: गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता। लेकिन कमाल की बात यह रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला, उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई, तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दें कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ टेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7:00 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि LA 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है, और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
1: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज द होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा, जापान और साउथ कोरिया, इवन पाकिस्तान, इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट आल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, नो डाउट अबाउट। मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
0: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है।

0: हाँ, दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरन साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्था मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है, ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशु से लेकर MMA तक की। एक तरफ वुशु में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे, इन्हीं में वुशु भी शामिल हैं, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशु के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशु की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशु अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
0: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे, वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: तो सामीन, अभी आप एशियन गेम्स के बारे में गुफ्तगु सुन रहे थे और अब एक बार फिर आपके मन पसंदीदा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारी खसूसी पेशकश का उन्वान है दिल की बात गीतों के साथ।

सामिन, यादें भी अजीब चीज़ें हैं। वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, जगहें बदल जाती हैं, लेकिन कुछ यादें दिल में वहीं की वहीं रहती हैं। बचपन की शरारतें, स्कूल के दिन, दोस्तों के साथ गुजारे हुए लम्हे, पहली बार किसी गीत को सुनने की खुशी, ये सब हमारी ज़िंदगी का वो ख़ज़ाना है जिसे वक्त हमसे छीन नहीं सकता। और जब कोई पुराना गीत सुनाई देता है तो यूं लगता है जैसे वक्त की घड़ी चंद लम्हों के लिए पीछे चली गई हो। यादें भी खुशबू की तरह होती हैं, यादें भी खुशबू की तरह होती है, छू लो तो हाथों में रह जाती है। आइए यादों के इसी खूबसूरत सफर पर चलते हुए और सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो शायद आपको भी आपके गुजरे हुए किसी हसीन लम्हे तक पहुंचा दे। आइए सुनते हैं।

का वो खजाना है जिसे वक्त हमसे छीन नहीं सकता, और जब कोई पुराना गीत सुनाई देता है तो यूं लगता है जैसे वक्त की घड़ी चंद लम्हों के लिए पीछे चली गई हो। यादें भी खुशबू की तरह होती हैं, यादें भी खुशबू की तरह होती है, छू लो तो हाथों में रह जाती है। आइए यादों के इसी खूबसूरत सफर पर चलते हुए और सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो शायद आपको भी आपके गुजरे हुए किसी हसीन लम्हे तक पहुंचा दे। आइए सुनते हैं।

सामीन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद का प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा, और आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं दिल की बात गीतों के साथ। मोहब्बत में जहां मुलाकात की खुशी होती है, वहीं जुदाई का दर्द भी होता है। कभी कोई अपना दूर चला जाता है, कभी हालात फासले पैदा कर देते हैं, और कभी रास्ते अलग हो जाते हैं। जुदाई सिर्फ किसी शख्स से दूर होने का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी ये अपने गुजरे हुए वक्त, अपने शहर, अपने दोस्तों और अपनी पुरानी जिंदगी से दूर होने का एहसास भी होता है। फासले बढ़ गए तो क्या हुआ, फासले बढ़ गए तो क्या हुआ, यादों का रास्ता आज भी वही है। फिल्मी नगमों ने जुदाई की इसी कैफियत को बड़ी खूबसूरती से आवाज़ दी है, तो आइए इस दर्द को महसूस करते हैं और सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो जुदाई के एहसास को अपने अंदर समेटे हुए है। आइए सुनते हैं।

सामीन, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा, और साथ ही हम पेश कर रहे हैं दिल की बात गीतों के साथ। इंतज़ार सिर्फ घड़ी की सुइयों को देखने का नाम नहीं, इंतज़ार एक कैफियत है, एक उम्मीद है, एक ऐसा एहसास है जिसमें इंसान हर आहट पर चौंक जाता है। शायद वो आ गया जिसका इंतज़ार था, किसी फ़ोन की घंटी,

सामीन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद का प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा, और हमारी खसूसी पेशकश है दिल की बात गीतों के साथ। जिंदगी में रिश्ते बहुत मिलते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद मुंतखब करते हैं। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो हमारी खामोशी भी समझ ले और हमारी खुशी में हमसे ज़्यादा खुश हो। कभी दोस्तों के साथ गुजारा हुआ एक छोटा सा लम्हा भी पूरी ज़िंदगी की खूबसूरत याद बन जाता है। दोस्त वो नहीं जो महफिल में साथ हो, दोस्त वो नहीं जो महफिल में साथ हो, दोस्त वो है जो तन्हाई में याद आए। तो आज का अगला नगमा उन तमाम दोस्तों के नाम जो हमारी ज़िंदगी के सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं, आइए सुनते हैं।

सामीन, आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा, और आज की पेशकश है दिल की बात गीतों के साथ। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी गम के बादल आते हैं तो कभी खुशियों की धूप निकलती है। लेकिन जिंदगी की खूबसूरती यही है कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया जाए, किसी अपने मुस्कुराहट, अच्छी खबर, कामयाबी की खुशी या दोस्ती के साथ, दोस्तों के साथ बैठकर हंसना। यही छोटे लम्हे जिंदगी को बड़ा खूबसूरत बनाते हैं।

खुशी बांटने से बढ़ती है, खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। तो आइए दिल पर खुशी की हल्की सी दस्तक के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत नगमा, आइए समाप्त कीजिए।

सामीन, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद का खूबसूरत प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा, और हमारी आज की खसूसी पेशकश दिल की बात गीतों के साथ अब अपने इख्तितामी मरहले की तरफ बढ़ रही है। आज हमने मोहब्बत की पहली धड़कन से सफ़र शुरू किया, किसी ख़ास शख्स की याद की, अनकही मोहब्बत की बात की, यादों के रास्ते पर चले, जुदाई और इंतज़ार को महसूस किया, दोस्ती और खुशी के रंग देखे, ख्वाब और उम्मीदों की बात की, तन्हाई, चांदनी रात, बारिश, मुस्कुराहट और दिल के दर्द को गीतों में महसूस किया। और अब बात आती है ज़िंदगी के सफ़र की। ज़िंदगी भी तो एक गीत की तरह, कभी उसमें खुशी के सुर होते हैं, कभी गम की लय, कभी मोहब्बत की धुन, कभी जुदाई की आवाज़ और कभी उम्मीद की मौसीकी। ज़िंदगी एक सफ़र है, मंजिल नहीं, हर मोड़ पर एक नई कहानी है। तो आइए दिल की बात गीतों के साथ के इस खूबसूरत सफ़र की आखिरी कड़ी के तौर पर सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो ज़िंदगी के कई रंग अपने अंदर समेटे हुए। आइए सुनते हैं।

0: तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। जिंदगी में हर ख्वाहिश को हासिल करना जरूरी नहीं है और हर अजीज चीज को छोड़ देना भी आसान नहीं होता, लेकिन कभी हालात, वक्त या किसी बड़े मकसद के खातिर अपनी पसंदीदा चीज से दस्तबरदार होना पड़ता है। असल समझदारी ये है कि ख्वाहिश और ज़रूरत, मोहब्बत और मसलियत और अपनी खुशी और दूसरों के हक के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना चाहिए।
1: इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान मशकूर हमद को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वाग्ले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking calls from you on matters related with business and market. But do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें श्रोताओं चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ विश्लेषक शरद कोहली शरद जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
0: अ वार्म वेलकम शरद
2: धन्यवाद प्राची धन्यवाद राजेश सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा अभिवादन
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर आइए उससे पहले सुने सुर्खियां
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर सिक्स्थ कंसेक्यूटिव वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रीज यूथ And U.S. stock market indices wrap up week on mixed note.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते देश के युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोल रहे हैं और अमेरिका के शेयर बाजार इस सप्ताह मिश्रित रुझान के साथ बंद हुए
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं कि सप्ताह के अंदर अंदर किस तरीके से हमारे शेयर सूचकांकों ने व्यवहार किया मार्केट का हाल कैसा था तो प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई भू राजनीतिक तनाव विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों के माहौल को लेकर चिंताओं ने निवेशकों को सतर्क रखा इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 487 अंक यानी लगभग 0.7% गिरकर 74,295 पर बंद हुआ वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52 अंक यानी 0.2% लुढ़ककर 23,346 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में सप्ताह के दौरान लगभग 0.2% की गिरावट आई क्षेत्रीय स्तर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रेल्टी और आईटी क्षेत्र में गिरावट रही वहीं एफएमसीजी हेल्थ केयर और मेटल में बढ़त दर्ज की गई अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह रुपया 33 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.88 रुपए पर बंद हुआ और इसी बीच वेस्ट बंगाल से हमारे साथ बबलू जुड़ रहे हैं बबलू जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए बबलू जी आपकी तरफ से थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है आप प्लीज अच्छे नेटवर्क क्षेत्र में आकर के हमसे बात करिए
3: क्या मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको
1: जी
3: हमारा मेरा सवाल ये है मैडम भारत में रियल्टी सेक्टर जो भी बहुत डाउन चल रहा है उसका क्या फ्यूचर है आगे में क्या रियल्टी सेक्टर आगे और अच्छा करेगी या फिर वो बुरा हाल हो जाएगा रियल्टी सेक्टर का इंडिया में
2: बबलू देखिए रियल एस्टेट सेक्टर का आप पूछ रहे हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर पूरे देश में बबलू यूनिफॉर्मली बिहेव नहीं करता है हम पूरे देश को कहें कि वो एक साथ आप जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हैं हो सकता है आप जहां रहते हो उस क्षेत्र में एक सैचुरेशन पॉइंट आया हो जिसकी वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो लैंड है अभी भी प्राची और राजेश को भी बताना चाहूंगा जो लैंड है जहां पर खासकर टाउन प्लानिंग हो रही है
1: जी।
2: जहां पर शहर एक्सपैंड करता है वहां पर अभी भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए वो साबित हो रहा है

0: कहीं कहीं जो अपार्टमेंट्स हैं जहां पर सप्लाई ज्यादा है बबलू जी, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक स्टैग्नेंसी आ गई है। तो ये इसको हम यूनिवर्सली पूरे, क्योंकि आकाशवाणी तो पूरे देश में जाता है, तो मुझे लगता है मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जो कि पूरे देश के लिए लागू हो तो वो बेहतर रहेगा। तो इसको हम यूनिवर्सली पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं कह सकते। ऐसे ही मैं उदाहरण के तौर पर आपको बबलू बताऊं कि जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, जो बहुत महंगे वाले घर होते हैं, उनमें कहीं रिसेशन नहीं है। बाकी ये आपको मैं इसका सिद्धांत बता देता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर कोविड के बाद से काफी बूम किया और उसके बाद इसमें एक एक प्लेटो फेस आता है। ये इसकी साइकिल है, धीरे ऊपर जाता है, फिर इसमें प्लेटो फेस आता है, फिर उसके बाद थोड़ी करेक्शन होती है। तो इसको हम साइक्लिकल बोलते हैं। ये मतलब एक एक एक पूरा का पूरा साइकिल है, पहले ऊपर जाएगा फिर फ्लैट होगा। तो कुछ हो सकता है कुछ समय के लिए आपके जिस इलाके में आप हैं वहां पर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप निवेश की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो वैसे तो निवेश अपने आपके जो सलाहकार है उनसे करना चाहिए, पर आप किसी दूसरी स्टेट में जहां पर शहर चल रहा है वहां पर आप देख सकते हैं। शहर चलता है, आपको शायद जानकारी होगी, शहर भी चलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोग जाते हैं, अरे यहाँ तो मॉल बन गया, यहाँ तो मार्केट बन गई, तो पहले था नहीं। तो मुझे लगता है उसको उस दृष्टि से आप इसको देखें और किसी दूसरे अन्य जगह पर आप ट्राई करें, मे भी आपका नजरिया बदलेगा। बाकी ओवरऑल आपके इलाके में आपकी बात सुन के लग रहा है ऐसे ही कि पर कुछ समय लगता है फिर उसको रिकवर करने।
1: Joining us from New Delhi is Amit Jha. A warm welcome, Amit. Hello, Amit, can you hear us? I think we've lost touch with him.
2: हेलो
1: यश, या अमित?
2: सर, आवाज आ रही है आपको?
1: बिल्कुल आ रही है, आप सवाल पूछे अपना।
2: हाँ, सवाल लीजिए। सर, सर नमस्कार सर।
0: हाँ नमस्कार अमित।
2: सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान लीजिए एनएससी या बीएससी का नेक्स्ट में रोल ओवर हो रहा है, रोल ओवर सर आप जानते हो डेरिवेटिव का,
0: हाँ जी,
2: तो रोल ओवर अगर ज्यादा हो रहा है तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? और दूसरा सर, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या संकेत बताते हैं सर? धन्यवाद सर।
0: ओके, चलिए पहले आपने रोल ओवर का पूछा अमित। ये डेरिवेटिव्स में होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसको उसको जब जो एक्सपायरी डेट होती है उससे हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ज्यादातर अमित देखा गया है, अगर मैं अपने तजुर्बे से बात करूं, तो रोल ओवर जब होता है, जब जिस तरफ आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट डेट पर आपको उसका उसके अनुकूल आपको नहीं लग रही है मार्केट, तो फिर आप उसको रोल ओवर करना चाहते हैं। वरना क्या होता है, आपको फिर लॉस बुक करके बाहर आना पड़ता है। तो रोल ओवर यही बताता है। या फिर एक और केस में रोल ओवर होता है जहां पर जो ट्रेडर्स होते हैं बहुत बुलिश या बहुत बेरिश होते हैं, उनको लगता है कि अभी तो पूरा मुनाफा नहीं आया, अगले एक्सपायरी डेट पे और ज्यादा मुनाफा आएगा, ये भी कारण होता है रोल ओवर का। दूसरा आपने ओपन इंटरेस्ट पूछा, ओआई इसको बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट बताता है कि किसी पर्टिकुलर कॉल पर, किसी पर्टिकुलर लेवल पर इस वक्त कितने ट्रेडर्स का ध्यान है, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक पर्टिकुलर लेवल पर बिल्डअप हो रहे हैं। क्योंकि आप ओआई पूछ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं अमित कि आप जानते हैं इसके बारे में कि कैसे जो ऑप्शन चेन होती है, अगर मैं ऑप्शन चेन के उदाहरण से लूं, तो चेन में एक लेवल पर अगर ज्यादा ज्यादा ट्रेडर्स का वॉल्यूम बन रहा है उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमें यह बताता है कि क्या इस लेवल पर बहुत सारे लोगों का इस समय ध्यान है, तो उसको फिर आप एक पैमाना मानकर आप अगला ट्रेड कर सकते हैं। बहुत टेक्निकल बात पूछी अमित ने, मुझे मेरे लिए थोड़ा सा रेवलेशन है कि अमित जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, बहुत रेगुलर कॉलर है। पर थोड़ा अमित संभल के करा करिए, ये बहुत टेढ़ी खीर होती है और कभी कभी क्या अक्सर धोखा भी दे जाती है, तो लॉट ऑफ पीपल बर्न देयर फिंगर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं अमित कि आप इसको ख्याल रख के करेंगे, ध्यान से करेंगे, और ये भी उम्मीद रखता हूं ओआई और रोल ओवर आपको दोनों समझ आ गया होगा।
3: नई दिल्ली से हमारे साथ सतपाल जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो
3: जी सतपाल जी, अपना आप सवाल पूछिए।
4: हाँ, कोहली जी और मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
4: मैं कोहली जी की वीडियो भी देखता हूँ, गोल्ड वाली वीडियो डेली देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ
0: जी।
4: और मेरा क्वेश्चन ये है सर, अभी जो लड़ाई चल रही है यूएस और ईरान की, इसके बीच में अभी गोल्ड का क्या सिचुएशन रहेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अब कौन सा सेक्टर आगे बढ़ेगा आने वाले 2 साल में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप? थैंक यू।
0: चलिए आपका पहला सवाल, यूएस ईरान की लड़ाई चल रही है तो गोल्ड का, गोल्ड में तो वैसे ही सतपाल जी बहुत हलचल चल रही है आजकल, ऊपर नीचे, पर अभी यूएस के फेड ने रेट्स बढ़ाए तो गोल्ड ने उसको अच्छा डाइजेस्ट किया, उसको उसको पचाया, और गोल्ड अभी जो हमारी फ्राइडे को रात की जो

सिचुएशन है उसमें कॉमिक्स में न्यूयॉर्क में काफी बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म आउटलुक तो सतपाल जी गोल्ड की अच्छी है, काफी शाइन के पहले ही बहुत चमकता है गोल्ड तो, और मुझे लगता है चमकने वाला है, और आपने लॉन्ग टर्म नजरिया रख के चले, पर एक डिस्क्लेमर जो शुरू में राजेश ने पढ़ा था उसका ध्यान रखें। और दूसरा आपने पूछा कौन सा सेक्टर मिड कैप या लार्ज कैप में चलेगा, मार्केट्स के लिए यू नो मैं आई एम श्योर हम डिस्कस करते हैं इसको बाद में, मार्केट्स के लिए बहुत टफ टाइम आया है, मुझे तो कई दफ़ा ऐसा लगता है मार्केट्स को किसी की नज़र लग गई है क्या हुआ है, क्योंकि 2024 के बाद से वो बिल्कुल निफ्टी ने तो नेगेटिव रिटर्न दिए, अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो। अभी सेक्टर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा आप डिफेंस सेक्टर को देख सकते हैं, एनर्जी सेक्टर को देख सकते हैं सतपाल, पर थोड़ा सा मार्केट में संभल के चलने की इस समय ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट अभी अमेरिका में जो सिचुएशन है, मार्केट्स हो क्या रहा है, हमें एक एक मिनट आपकी इजाज़त से लेना चाहूँगा, मार्केट्स डोमेस्टिक फैक्टर्स को नहीं देख रही हैं, मार्केट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स को देख रही है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस।

0: के चलने की इस समय जरूरत है, क्योंकि मार्केट अभी अमेरिका में जो सिचुएशन है, मार्केट्स हो क्या रहा है, हमें एक एक मिनट आपकी इजाजत से लेना चाहूंगा। मार्केट्स डोमेस्टिक फैक्टर्स को नहीं देख रही हैं, मार्केट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स को देख रही हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो गई अमेरिका में क्या, तो थोड़े से जो अंतर्राष्ट्रीय जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल सिचुएशन है सतपाल जी, बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है मार्केट में भी। बाकी आप डिफेंस और एनर्जी सेक्टर, इस दो के आप नजर रख सकते, क्योंकि आपने सेक्टर पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। बाकी मार्केट में बहुत फूक फूक के पग धरना जिसको कहते हैं, वो इस समय सिचुएशन है जी।
1: नई दिल्ली से हमारे साथ संजीव जुड़ रहे हैं। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ नमस्कार कोहली साहब, नमस्कार टीम मार्केट मंत्रा।
0: नमस्कार संजीव, बताइए।
2: हाँ कोहली साहब, आपके आने का बहुत इंतजार रहता है हमें।
0: माय प्लेजर सर, मुझे आपसे बात करने का इंतजार रहता है, बताइए।
2: थैंक यू थैंक यू कोहली साहब। एक सवाल है, 2007 में हमने एक पेमेंट लिंक्ड फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया था
0: जी,
2: ज्वाइंटली
0: जी।
2: अच्छा वो प्रोजेक्ट तो थोड़ा डिले हो गया, मगर उसका ओवर द ईयर कुछ 4-5 साल पहले हमें उन्होंने सो कॉल्ड पोजेशन दे दिया।
0: अच्छा,
2: पोजेशन देने के बाद उसकी रजिस्ट्री भी हो गई
0: जी
2: उस एरिया में कंसर्न
0: जी।
2: अब उसको अगर हमने बेचना है तो उसका व्हाट कॉल फ्रॉम डेट ऑफ पोजेशन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से वो कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से गिना जाएगा, कैसे होता कैलकुलेशन?
0: देखिए संजीव जी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं कि पहले कुछ लोग रजिस्ट्री मानते थे, कुछ पोजेशन मानते थे, पर जनरली जहां बिल्डर की अलॉटमेंट होती है तो ज्यादातर जो केसेस हैं कोर्ट्स में और ट्राइब्यूनल में, वो जिस डेट को आपको अलॉटमेंट होता है उस डेट से आपका आपका मालकियत मान लेते हैं। तो आपको जब संजीव जी इस पे जब लेटर मिला होगा अलॉटमेंट का, तो आप उस डेट से मान के चलेंगे। तो आप मेरे ख्याल, क्योंकि 2007 का है तो मुझे लगता है आप शायद इंडेक्सेशन यूज करना चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे, पर आपको ये पता होगा कि इंडेक्सेशन यूज करते हैं तो 20% पड़ता है, और अगर आप बिना इंडेक्सेशन के करें तो 12.5% पड़ता है। तो मैं संजीव आपको ये भी सलाह दूंगा कि दोनों ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करके देखें, विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, पर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट से आप इसको काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, मुझे ना जाने ट्राइब्यूनल में किसी में रजिस्ट्री बोला है, किसी में पोजेशन बोला है, किसी में अलॉटमेंट बोला है, पर ज्यादातर कंसेंसस यही निकला कि इसको हम डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेते हैं जी।
3: Hina Prasad joins us from Bengaluru. A warm welcome, Mr. Prasad.
4: Hi, good evening, Market Mantra. This is Hina Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Priya ji.
1: Hello, sir.
4: Sharad ji, two questions.
0: Yes.
4: The first question is a lot of IPOs coming, the two from the leading companies.
0: Yeah.
4: One IPO is getting close on the 21st. I don't want to name the company.
0: Yeah.
4: At least in this volatile market, is it worth investing in this kind of a scenario? Is it worth in these leading companies? My second question is, this is a continuation of the question which I've asked about 2-3 weeks back.
0: Yeah.
4: So for the profit booking, now I am holding 30% of the defense sector, 20 each in banking, IT, and FMCG.
0: Okay.
4: The balance 10 are in automobile and other few in the thing.
0: Okay.
4: In this, everything is in the profit, in the very good margin, except for the IT sector.
0: Okay.
4: So, which companies to be sold and how much to be sold in terms of percentage? Thank you. These are my two questions.
0: Okay. Although, Mr. Prasad, you have not named the companies, but the questions are quite, specific. But nevertheless, I'll try and answer. See, IPOs, I was reading a report on the recent IPOs which came, and it so came out that almost 4 or 5 of the IPOs are sort of listing at premium. Not all of them, you know. So therefore, I feel that, you have to be very selective. So I can't generally, Mr. Prasad, say that what should, because some of the IPOs are quite attractive also, whereas some of them may not be good enough. Some of them are not getting listed at their price band. They are getting listed below the issue price. So you have to, I think in an IPO, there needs to be a tick box, a checklist, who's the promoter, what are the prospects and so on. So, and then of course, the market sentiment at that time also governs the listing price. So, a general view about IPOs, Mr. Prasad, cannot be given, because I'll have to go into specific, which we don't name, as you rightly pointed out. Second is, you spoke about defense sector and your IT sector. So therefore, I would not recommend, Mr. Prasad,

0: booking a loss in IT sector. However, I would recommend booking some profit in the other sectors, like you mentioned about defense, you mentioned about FMCG, banking. So I may not hesitate to say that, you know, you can probably book profits. And I feel the situation in the market is such that if you take the profits home, you should be a happy man, you should be a lucky man, because a lot of people around the world at this point of time are facing this problem. They are not able to book profits. So therefore, I would recommend how much profit to book. See, there are certain questions with Rajesh and Prachi would agree that it depends upon your overall portfolio, your requirements, your cash flow requirements, how long, what is your risk taking appetite, what's your age, What's your remaining portfolio like? So, you know, Mr. Prasad, I hope you understand that these are the things which we need to know to be able to decide that how much to exit, how much to keep, because it depends. If you don't need the money, maybe I'll say keep it for a very, very long time. But then the problem is if I say for 10 years, then you might say, I mean, why 10 years? That's a very long period. Therefore, I will recommend in profits, wherever you are in profits, you book the profits. And wherever you are in loss, I think it is worth waiting, because as it is, you are in loss. Maybe you'll add a little more to the loss. But if you book the loss now, your loss is confirmed. So if the market rises, market is going to rise. It is right now under a depression. But then it will rise definitely in the times to come, hopefully.
1: बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं. टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए. टिंकू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आप अपना सवाल पूछिए.
0: पूछिए टिंकू जी.
2: हेलो.
0: हाँ जी, पूछिए, आवाज आ रही है आपकी.
2: सर, मैं ये पूछना चाहते हैं, मैं किसी कंपनी में ऐसी मैं काम करते हैं लेबर में, और मेरा सैलरी जो भी आता है मेरे कैश में मिल जाता है, ना कोई चेक है ना कुछ है, और किसी कंपनी को मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, भविष्य में ऐसा कोई दिक्कत आवे फैमिली में, इसीलिए तो मैं आम आदमी.
0: मुझे लगता है इनसे संपर्क टूट गया, पर इन्होंने अपनी बात ऑलमोस्ट कह दी. कैश में इनको सैलरी मिलती है, और शायद किसी में डेली कॉन्ट्रैक्ट टाइप शायद काम करते हैं या सैलरी मिलती है. हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छा विचार है टिंकू जी का, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का. मुझे लगता है इसके लिए आपको, देखिए, अगर तो आप कंप्यूटर सेवी हैं तो आप ऑनलाइन जाके हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है, पर अगर आपको उसमें थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी अपने इलाके में जो आपके कोई एजेंट है उनसे आप संपर्क करें, और संपर्क करके वो आपकी मदद करते.
1: दिल्ली से हमारे साथ सतीश जुड़ रहे हैं. सतीश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: गुड इवनिंग सर. कोहली साहब,
0: गुड इवनिंग
3: सर. मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, और दूसरा क्वेश्चन है कि सर ये इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में कुछ कर नहीं रहे, डेढ़ डेढ़ साल तक शेयर अटके रहते हैं
0: जी,
3: और ये लास्ट डेट क्या है सर पेपर शेयर फॉर्म की कन्वर्ट कराने की डीमैट में? थैंक यू सर.
0: लैब ग्रोन डायमंड्स, सतीश जी, अच्छा फ्यूचर है. मुझे निजी तौर पे एक दो इनॉग्रेशंस थी लैब ग्रोन डायमंड्स के शोरूम्स की, वहाँ जाने का मौका मिला, और मैंने देखा वाकई में वो देखने में ओरिजिनल डायमंड की तरह दिखाई देते हैं. बहुत अच्छा भविष्य है जिन लोगों को डायमंड का शौक है और वो ओरिजिनल डायमंड नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ देख सकते
4: हैं. प्राइस वाइज दे आर नॉट वेरी चीप.
0: नहीं, फर्क तो है, उतने महंगे तो नहीं है जितने महंगे, कैरेटेज पे डिपेंड करता है. और दूसरा इनका एक और सवाल था सतीश जी का कि हाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का इनका काफी समय से सवाल रहता है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में आपकी शिकायत बहुत दिन से बनी हुई है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक दो बार वहां होकर आए. हम जहाँ इस समय बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड है, उनसे संपर्क करें. नॉर्मली इतनी देर लगती नहीं है क्योंकि काफी वहां पर प्रणाली सुदृढ़ है इस समय, पर मुझे नहीं पता किस कारण से आपका मामला वहां अटका हुआ है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उनसे तुरंत संपर्क करें. और एक ई निवारण ऐप है, सीपी ग्राम्स करके ऐप है, उन पे भी आप डालें, वहां पर शिकायत किसी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ हो तो आप डाल सकते हैं. तो कोशिश करें सतीश जी, हम तो यही कह सकते हैं कोशिश करें. अब ये तो स्पेसिफिक मामला हमें पता हो तो हम उसकी गहराई में तह में जाके आपको सलाह दें, तो आप ट्राई करिए, उम्मीद करते हैं कि काम बनेगा.
1: अन्य खबरों में श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव आयुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल

0: और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ये भी सुनिश्चित करना है कि देश के युवाओं की शिक्षा और कौशल बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: मुंबई से हमारे साथ SJ पवार जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो
0: जी,
2: मैं सीनियर सिटीजन हूँ
3: जी।
2: हाँ, मेरा इंटरेस्ट इनकम 2 लाख है
3: जी,
2: और शेयर बेस्ट में 3 लाख कमा रहा हूँ
3: जी,
2: प्रॉफिट हुआ
3: जी।
2: तो मुझे टैक्स शेयर पे गिरने है या नहीं, क्योंकि 12 लाख का तो अभी ये हुआ ना लिमिट मैक्सिमम
3: जी,
2: तो उस बारे में जानकारी चाहिए।
4: देखिए पवार साहब, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में जो शेयर्स का गेन होता है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपका, मैं अगर कैलकुलेट करके देखूं तो 4 लाख से ऊपर जा रहा है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो न्यू रेजीम में है। तो क्योंकि वो पवार साहब चार लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 लाख से ऊपर में, और राजेश और प्राची को भी बताऊंगे, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, बेसिक एग्जेम्पशन में कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो कवर हो जाता है, पर क्योंकि कैपिटल गेन पर एक स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है। तो इसलिए अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर जा रहे हैं तो भले ही आप 12 लाख से कम हैं तो आपको फिर उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं पवार साहब आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है वो स्लैब के हिसाब से नहीं लगता है, वो अलग रेट पर लगता है। तो इसलिए आपको, मेरे विचार से पवार साहब, आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए जी।
0: अन्य खबरों में, नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इस प्रारूप के अंतर्गत 2000 रुपए तक के UPI लेन देन पर कोई MDR नहीं लगेगा। इस प्रारूप का व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन के लिए UPI पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, चाहे कितनी भी रकम ट्रांसफर की जाए। 75,000 रुपए और उससे ज्यादा के लेन देन के लिए MDR की सीमा प्रति ट्रांजेक्शन 300 रुपए होगी। 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लागू किया जाएगा। महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि MDR क्या है, आप इसे विस्तार से हमारे श्रोताओं के लिए आप समझाइए।
4: मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसको बोलते हैं, और ये वेंडर के ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है, पहले भी था क्रेडिट कार्ड

0: खर्च हो रहे थे, और मुझे लगता है 10 साल हो चले थे, तो क्योंकि 10 साल हो चले हैं तो इसलिए इसलिए उस पर अब ये MDR लगाया गया, और उम्मीद कर रहे हैं कि वेंडर्स इसको देंगे। प्रावधान तो यही है प्राची कि इसको वेंडर्स देंगे अपने पास से, उनका देना बनता है और नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। जी
1: जी
2: Major US indices displayed a mixed performance yesterday. The Nasdaq Composite Index rose 0.4% and the S&P 500 added 0.2%, led by gains in semiconductor stocks. Conversely, Dow Jones Industrial Average dipped 0.2%. Meanwhile, markets wrapped up a volatile week on a mixed note as investors navigated rising treasury yields, elevated oil prices, and Federal Reserve's rate hike. For the week, the Dow posted third straight weekly decline, sliding 1.7% to mark its worst performance since March. The S&P 500 fell marginally by 0.1%. In contrast, Nasdaq rose 0.7%.
1: दिल्ली से हमारे साथ आरएस दहिया जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: मैम नमस्कार, कोहली जी को स्पेशल नमस्कार।
0: नमस्कार दहिया सर,
3: मेरा क्वेश्चन ये है कोहली साहब से कि स्मॉल इन्वेस्टर्स आर गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम फॉर लास्ट 1.5 ईयर्स।
0: जी,
3: व्हेन विल आर निफ्टी इंडेक्स एंड बीएससी सेंसेक्स will reach its all-time high level or somewhere closer to that, maybe plus 15% from here.
2: I wish we knew.
0: All right. Well, if wishes were horses, we would have ridden them, as they say. Dhaiya Saab, it is true that for it's been almost 2.5 years. You rightly said that, you know, we've been the indices. But I feel that people who are, you are a very mature investor, Mr. Dahiya, and I feel these are the cycles which normally come in any investor's, you know, overall career, I would say, overall span, should I say. So I think let's keep our fingers crossed, and we need to see that the geopolitical and geoeconomic situation around the world, Mr. Dahiya, is not letting the market go up. The Indian parameters are fine, but then somehow the markets are looking at, you know, the global picture, the global, you know, crude oil, bond yields, crude dollar index, and so on and so forth. So let's hope for the best. I think once the war ends and Strait of Hormuz and Bab al-Mandeb, you know, these routes open, the crude oil prices cool down, and we will see the market. So I think patience is a virtue, I would say. So aapne itna dhairya rakha hai, Dahiya saab, to thoda sa aur dhairya rakhe. Baki aapke muh mein ghee shakkar, 15% kab badhegi? Hum to kehte hain ki jaldi badhe, aapke baat, aapke vachan satya hon.
2: US President Donald Trump has signed a law expanding sanctions against Russia and providing for tariffs of up to 100% on major buyers of Russian oil and gas, while extending U.S. sanctions authority against Iran for 5 years. The White House said the measure authorizes and expands statutory sanctions, tariffs, and prohibitions on Russia. Global crude oil prices displayed mixed trend this week. During the week, Brent crude November futures dropped 0.7% to settle at $103.87 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures added 0.2% to end at $100.30 per barrel. Oil prices eased in the last few trading sessions as markets anticipated that the closure of Saudi Arabia's key pipeline will have a smaller impact on supplies than initially feared.
1: शरद जी कार्यक्रम में आने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो समय की सीमा है भाई
0: जी,
1: तो आज हम इतना डिस्कस कर पाए जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
2: थैंक यू शरद,
1: धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू सो मच।
2: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन फॉर 6 कंसेक्यूटिव वीक। प्राइम मिनिस्टर सेज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रीज यूथ, एंड यूएस स्टॉक इंडिसेस रैप अप वीक ऑन मिक्स्ड नोट। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। टिल टुमारो, गुड बाय।
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: यू आर लिसनिंग टू अ रिपीट ब्रॉडकास्ट ऑफ टुडेज मार्केट मंत्रा प्रोग्राम, ओरिजिनली एयर्ड एट 6:30 PM।

11:41 हो चुके हैं। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रोग्राम का यह आखिरी गीत सोनू निगम की आवाज के साथ छोड़े जा रहा हूँ आपको, लेकिन इस वादे के साथ कि आप रखिएगा अपना ख्याल और उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे ने उधना उकाई सोनखंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करैकला और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ बादल बरसने और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is आकाशवाणी, the news read by रेशमा तिवारी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 MHz पर। ये कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका नाम है अंग वस्त्र। ये कहानी आपके लिए लिखी है नीलम ए कुमार ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी अंग वस्त्र।

राज आज मुझे शॉपिंग के लिए ले जाना, मुझे कुछ ड्रेसेस खरीदनी है। भाई की शादी जो आ रही है और होने वाली भाभी के लिए कुछ साड़ियाँ और ड्रेसेस भी चाहिए मुझे, राज की पत्नी ने किचन से बाहर आते हुए कहा। ठीक है, मैं आज शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा और फिर चलेंगे। वैसे जाना कहाँ है? अरे ये जो मार्केट है ना, यहीं एक बहुत मशहूर और बहुत अच्छा बुटीक है, उसका नाम है अंग वस्त्र। मेरी फ्रेंड बता रही थी दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं वहाँ कपड़े खरीदने, बहुत ही अच्छी क्वालिटी और वैरायटी है उनके पास। अब मैं सोच रही हूँ वहीं चलते हैं।

राज शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ गया। कुछ आधे घंटे में ही वो बुटीक में पहुंच गया जिसका नाम था अंगवस्त्र। एक आलीशान बुटीक, 50-60 वर्कर तो थे ही उनके पास। एक से बढ़कर एक ड्रेस, साड़ी और लहंगे टंगे हुए थे शोकेस में, बहुत ही मनमोहक डिजाइन। राज की पत्नी एक साड़ी काउंटर पर जाकर साड़ी देखने लगी। तभी बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व की महिला बाहर उतरी। गोरा रंग, काले लंबे बाल, शिफॉन की सफेद साड़ी, हाई हील और आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए। वो जैसे ही बुटीक में दाखिल हुई, सारे वर्कर्स और मैनेजर खड़े होकर उसको ग्रीट करने लगे। राज ने एक सेल्समैन से पूछा, ये कौन है? तो वो बोला, अरे यही तो है इस बुटीक की मालकिन। राज ने उस महिला की ओर मुड़कर देखा। जैसे ही उसने अपने सनग्लासेस उतारे, राज देखता ही रह गया। मधु, तुम? मधु ने राज को पहचान लिया। राज को देखकर वो बहुत विचलित हो गई। वो अपने केबिन में चली गई जहां उसका ऑफिस था। मधु आंखें बंद कर कुर्सी पर बैठ गई और अपने अतीत की यादों में डूब गई।

मधु अपना 12वीं का परिणाम देखकर खुश हो गई। सीबीएसई के 12वीं में उसने टॉप किया था। बहुत ही होशियार और मेहनती लड़की थी मधु। परिणाम देखकर वापस घर लौटते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। अरे इतना खुश क्यों हो, पास हो गई क्या? पास नहीं माँ, मैंने टॉप किया है, मधु ने खिलखिलाते हुए अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा। मधु की माँ की आंखों में आंसू छलक आए। मधु जब 5 बरस की थी तभी एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गई थी। उसकी माँ एक सरकारी स्कूल में आया का काम करती थी। बड़ी ही कठिनाइयों से वो मधु और उसके छोटे भाई का पालन पोषण कर रही थी। रात को लोगों के कपड़े सिल सिल कर वो किसी तरह से गुजर बसर करती थी। दिन भर मेहनत कर वो उनकी शिक्षा

करती थीं। दिन भर मेहनत कर वो उनकी शिक्षा, खानपान और सुख सुविधाओं को किसी तरह से पूरा कर रही थी। मधु बहुत ही खूबसूरत किशोरी थी, पतली लंबी, तीखे नैन नक्श, लंबे घने और घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी कजरारी आंखें थी उसकी, बहुत ही मनमोहक लगती थी। स्कूल समय से ही मधु एक लड़के राज को पसंद करती थी। राज उसके पड़ोस में ही रहता था। वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ता था। स्कूल के बहुत सारे प्रोजेक्ट में राज ने मधु की मदद की थी। आज राज ने मधु को मिलने एक बाग में बुलाया था। ठीक 5 बजे वो वहाँ पहुँच गया और एक हार सिंगार के पेड़ के नीचे बैठकर मधु का इंतजार करने लगा। नीचे छोटे छोटे सफेद फूल झड़ रहे थे, मानो जैसे इस पेड़ के फूल मधु और राज का स्वागत कर रहे हों। तभी वहाँ मधु आ गई और उसके पास बैठ गई।

सुनो राज, पता है मैंने आज परीक्षा में टॉप किया है। राज चुपचाप बैठा था, खोया खोया सा। क्या तुम्हें यह सुनकर खुशी नहीं हुई? चुप क्यों हूँ, बोलते क्यों नहीं? मधु, तुम जानती हो मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, और उनकी दुकान तो है ही। वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़कर उनकी दुकान में हाथ बटाऊं। साथ ही वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता तक देख लिया है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, पर उन्होंने मेरी एक भी न सुनी। अगले महीने की 11 तारीख को मेरी शादी तय कर दी गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सुनते ही मधु की आंखों में आंसू आ गए, वो कुछ नहीं बोल पाई। राज भी कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों ना हम कहीं दूर चले जाएं? नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। राज, उसे बहुत मुसीबतें उठाकर मेरा और मेरे भाई का पालन पोषण किया है। राज ने मधु को समझाया, मधु देखो, हम दोनों अपनी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है अब। हार कर मधु ने राज की बात मान ली। अगले दिन मधु घर नहीं लौटी। जब मधु बहुत देर तक घर नहीं आई तो उसकी माँ व्याकुल हो उठी। सब जगह ढूंढा पर मधु कहीं नहीं मिली। कहाँ गई होगी? रात के 8 बज चुके थे। मधु की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उसने पड़ोसियों की सलाह मानकर मधु के गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी और साथ में उसके मामा को भी सूचित कर दिया।

इधर मधु और राज एक अस्पताल के बाहर बैठे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। रात के 12 बज चुके थे। राज बोला, मधु चलो घर वापस चलते हैं। बहुत बड़ी गलती की घर से भागकर। क्या कह रहे हो तुम? मैं अब घर वापस कैसे जाऊं? किस मुंह से जाऊं? अपनी माँ का सामना कैसे करूं? वो तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरे कारण उसका समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग ताने मारेंगे। मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन में सब भूल जाएंगे। नहीं नहीं राज, मैं वापस घर नहीं जा सकती। तो फिर ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे भरोसे पर ही मैंने अपना घर छोड़ा है। तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते। मधु ने ऐसा कहकर राज का हाथ कसकर पकड़ लिया। राज को उम्मीद थी कि मधु आएगी तो वो अपनी माँ के गहने और कुछ ना कुछ रकम लेकर जरूर आएगी। पर जब उसने देखा कि मधु के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसे समझ में आ गया कि आगे का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। उसने बड़ी निर्दयता से मधु से अपना हाथ छुड़ाया और अपने घर वापस चला गया।

इधर अस्पताल के पास मधु को रोता देख एक आदमी उसके पास आया और इस वक्त यहां होने और रोने का कारण पूछा। मधु ने सारी बात रोते रोते उस आदमी को बता दी। कोई बात नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है, मेरा परिवार भी वहीं रहता है। इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ कैसे वक्त बिताओगी? मेरे साथ चलो, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मधु पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, पर जब उस आदमी ने भरोसा दिया तो उसके साथ चल दी। जैसे ही उस आदमी के घर पर पहुंचे तो मधु ने देखा कि वो तो एक छोटा सा कमरा था, वहां तो परिवार का कोई सदस्य नजर ही नहीं आ रहा था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, आपका परिवार किधर है? मधु ने थोड़ा घबरा कर पूछा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, उसने मधु को धक्का मारा और वो जमीन पर जा गिरी। उस आदमी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। मधु को समझ में आ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इधर मधु के मामा ने राज को बुलाकर अपनी पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि मधु को उसने कहाँ छोड़ा था। फिर मधु के मामा ने उस एरिया के आसपास मधु को ढूंढना शुरू किया और 2-3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मधु के मोबाइल फोन को ट्रैक कर उसको बचा लिया और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। मधु को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। मधु ने अपनी आप बीती माँ को बताई और उससे लिपट गई। माँ ने मधु को गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी बिलख बिलख कर रोने लगी।

मधु का दिल टूट चुका था। कहां वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, पर अब उसके सपने बिखर चुके थे। समय बीतता गया, मधु को पता चल गया कि राज की शादी एक बहुत अच्छे खानदान में बहुत सुंदर और सुशील लड़की से हो गई थी और वो खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर मधु की माँ ने भी अपनी बेटी की शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन मधु ने साफ इनकार कर दिया। बोली, माँ मेरा भरोसा अब इन संबंधों से उठ गया है। तो क्या उम्र भर ऐसे ही बैठी रहोगी? इतना लंबा जीवन है, अकेले कैसे काटोगी बेटा? माँ, जीवन में शादी ही सब कुछ नहीं है, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मधु ने फैशन डिजाइनिंग का डिग्री कोर्स किया और एक डिजाइनर बन गई। बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जो कि सिलाई का काम जानती थी। मधु की माँ पहले से ही सिलाई के काम में होशियार थी। ऐसे कई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसने अपने साथ जोड़ा जो कि सिलाई का, कढ़ाई का और काज बटन का काम जानती थी। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा, कई महिलाओं को काम मिलने लगा, बहुत सारे कारीगर उसकी दुकान से जुड़ गए। इसमें उसको अपनी माँ की बहुत सहायता मिली। उसका बुटीक अंग वस्त्र धीरे धीरे प्रसिद्ध हो चला था। मधु ने दिन रात मेहनत कर अपने उस छोटे से बुटीक को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि आज अंग वस्त्र पूरे शहर में जाना माना बुटीक बन चुका था। दूसरे शहरों से भी लोग वहां खरीदारी करने आने लगे थे। उसके बुटीक के कपड़े दूसरे शहरों में और विदेशों में भी एक्सपोर्ट होने लगे थे। आज मधु एक संपन्न और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। मैडम देखिए, ये ड्रेस तैयार हो गई है, ठीक है ना? अगर आपका अप्रूवल मिल जाता है तो बाकी ड्रेसेस भी बनने भेज देंगे। ये ऑर्डर हमें जल्दी से जल्दी डिलीवर करना है, मधु के मैनेजर ने मधु से कहा। मधु ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और ड्रेस देखकर बोली, हाँ हाँ एकदम परफेक्ट, आप ऑर्डर तैयार करवाइए। वो उठ खड़ी हुई अपनी पूरी हिम्मत और जोश के साथ।

मधु ने बाहर झांका तो देखा राज मुंह लटकाए हुए उसके बुटीक अंग वस्त्र से बाहर जा रहा है। उसके चेहरे पर पछतावा और शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि अब वो एक सशक्त मधु का सामना भी कर पाए। मधु जानती थी कि उसने अपने जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और पीड़ा को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। ऐसी ताकत जिसके बल पर वो आज जमीन से उठकर आसमां तक पहुंच गई।

कितनी ही ऐसी लड़कियां होती हैं दोस्तों, जो जीवन में कठिनाइयों के बाद हिम्मत हार जाती हैं। याद रखिए, तरह तरह की जो कठिनाइयां होती हैं वो हमारी परीक्षाएं लेने के लिए ही आती हैं। यदि आप हिम्मत बनाए रखेंगी तो यकीन मानिए, आप दुनिया को जीत सकती हैं। ये कहानी कुछ ऐसा ही हमें सिखाती है, किसी भी परिस्थिति में जीवन के दुखों और परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंगवस्त्र, जिसे आपके लिए लिखा था नीलम ए कुमार ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम, जिसका नाम है पानी पर लिखी कहानी, इसको समेटने की इजाजत दीजिए रश्मि कुकरेती को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2027

0: 40 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनखड़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इसका मकसद अवैध और तय समय से ज्यादा समय तक रुके विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके अप्रवासन की स्थिति की जांच करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर उचित कार्रवाई करना था। इस सिलसिले में 150 पुलिसकर्मियों की कुल 25 टीमें बनाई गई और उन्हें कुल 43 जगहों पर तैनात किया गया। अभियान के दौरान 40 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया और उनकी जांच की गई। इसमें 31 नाइजीरियाई, 4 युगांडा के, 3 तंजानिया के और 2 आइवरी कोस्ट के नागरिक थे। अभियान के तहत 10 विदेशी नागरिकों के खिलाफ देश से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Semicon India 2026, the fifth edition of India's flagship semiconductor conference, concluded successfully at Yashobhoomi in New Delhi. Three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers. Three-day witness 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging, equipment and materials, power electronics and artificial intelligence. Information and

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

ऐसे कितनी अच्छी फीलिंग होती है ना जब किसी इंसान की वजह से हम मुस्कुराते हैं और कोई इंसान हमारी वजह से मुस्कुराता है ना। गीत की बात करें तो आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, और फिल्म का नाम था पतीता। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म 1953 में आई थी और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था अमिया चक्रवर्ती ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद, उषा किरण, आगा और ललिता पवार ने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

इसे बिछुआ नहीं इश्क का खुमार कहते हैं। गीत आप सुन रहे थे मधुमति फिल्म से लता मंगेशकर और बन्ना डे की आवाज में। संगीत सलील चौधरी का था और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म आई थी 1958 में और इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे बिमल रॉय। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी दिलीप कुमार, वैजयंती माला और जॉनी वॉकर ने। इस फिल्म को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ में।

बार बार देखो नहीं, बार बार सुनो, क्योंकि हम बोलते हैं आप ही के लिए। गीत आप सुन रहे थे रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म का नाम चाइना टाउन, संगीत रवि का और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1962 में और इस ये एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण किया था शक्ति सामंता ने। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी शम्मी कपूर, शकीला और हेलेन ने। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आप ही के लिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सौदेश पिलो 1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 1:40 और 3 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म उजाला से। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और ये एक रोमांटिक क्राइम फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी शमी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार, लीला चिटनिस और टुनटुन ने। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था नरेश सैगल ने। और अभी जो गीत मैंने आपको सुनवाया था, इस गीत को पिक्चराइज किया गया था शमी कपूर और माला सिन्हा पर। इस फिल्म के संदेश की बात करें तो ये इस फिल्म ने संदेश दिया कि ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, इसलिए जिंदगी में हमेशा ईमानदारी करते रहिए। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है मुकेश की आवाज में, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। फिल्म का नाम ओपेरा हाउस और संगीत था चित्रगुप्त का, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1961 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने। फिल्म में अभिनय किया था अजीत, बी सरोजा देवी, केएन सिंह और ललिता पवार ने। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है मन्ना डे की आवाज में और फिल्म का नाम है तीसरी कसम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार

0: करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मतदाता सूची में नोटिस दिए जाने की खबरों पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद उनका नाम अद्यतन व मान्य कर लिया गया है। इसे 4 नवंबर को आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाली शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। आयोग ने पारदर्शी भागीदारी वाली और समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज इलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। पुरुष हॉकी टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में सुबह 11:30 बजे इंडोनेशिया से भिड़ेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
2: Bharat aaj duniya ka teesra sabse bada startup ecosystem hai aur Bharat ki startup story ab keval bade shaharon ki kahani nahi hai. Aaj kareeb aadhe recognized startups tier 2 aur tier 3 shaharon mein hai. Yani aaj gaon, kasbe aur chote shahar ka yuva bhi भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training dashes was reviewed with 14 states and UTs, including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up to the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi, Mr. Vaishnav said that India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging.

कैसे कहूँ कि याद आ रही है कि तुम्हें भी आने लगे मेरी उतनी ही याद। कैसे कहूँ कि याद आ रही है कि तुम्हें भी आने लगे मेरी उतनी ही याद। जितनी कितनी बार कहूँ चले आओ, कितनी बार कहूँ चले आओ बिना ये सोचे कि क्या कहेगी ये दुनिया। स्वादिष्ट प्लेबैक मेगा हट्स पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 18 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

वैसे गाने से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज का प्रोग्राम किस दिशा में जाने वाला है। जी हाँ, प्यार की गलियों में, यानी साजन की गलियों में। तो चलिए, फिर देर किस बात की। अगला गीत आप ही के लिए।

ये शब्बा खैर का नहीं बल्कि जुड़ने का वक्त है, तो जल्दी से जुड़िए मेरे साथ यानी 100.1 MHz के साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, क्योंकि ये वो वक्त है जब दो दिल एक साथ सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

के साथ यनिशा 100.1 MHz के साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, क्योंकि ये वो वक्त है जब दो दिल एक साथ सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

कितनी खूबसूरत बात है ना कि फूल कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितने भी सुंदर क्यों ना हो, अगर मन हमारा किसी अपने से मिलने का कर रहा हो तो फिर बाकी चीज़ें फीकी लगने लगती है ना। और जब बात हो साजन से मिलने की तो इंतज़ार की घड़ियाँ और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। चलिए, जब तक साजन से मुलाकात नहीं होती, हम साजन को ख़त लिखते हैं। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है।

प्रेम करते हुए कभी कभी मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे अंदर आ चुका है। कभी कभी मैंने तुम्हें मुझसे बर्ताव करते हुए देखा है। इस प्रमाण के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रेम दो व्यक्तियों को एक दूसरे के भीतर अमर कर जाता है। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:41 और 34 सेकेंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

वैसे ये बात तो सच है कि किसी किसी की आंखों में हमें इतना प्यार मिलता है कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आंखें इतना कुछ कह देती हैं, एक नज़र मिलती है और दिल की न जाने कितनी बातें बयां हो जाती है। और शायद इसीलिए ही मोहब्बत में कहा जाता है कि ज़बान की आंखों से ज़्यादा आंखों की बातों का ज़्यादा मतलब होता है, महत्व होता है। गीत अब तक पहुंच रहा है अगला, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी रूपा धवन। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर

0: अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ. वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में कॉर्फबॉल प्रीमियर लीग 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि भारत में कॉर्फबॉल के प्रति बढ़ता उत्साह देखना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल युवाओं के लिए नए रास्ते खोलते हैं, सेहत और मिलकर काम करने की भावना को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is the world's third largest startup ecosystem.
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: सेमिकॉन इंडिया 2026, द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड सक्सेसफुली एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली। The three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers. The three-day witnessed 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging and equipment and materials, power electronics and artificial intelligence. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw cautioned that semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi yesterday, Mr. Vaishnaw said India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
1: Indian Railways has approved coverage 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division at a cost of over 250 crore. The project will expand coverage.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है 3:11 और 18 सेकंड। आप हैं अपने ही दोस्त रूपा धवन के साथ और रूपा आपके लिए लाई है बेहद ही हसीन पलों के बहुत ही खूबसूरत से गीत, और ये गीतों से सजा गुलदस्ता आप सुन रहे हैं अपने ही चैनल, पसंदीदा चैनल पर, आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो बहुत ही प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए।

साथियों, 60 के दशक के गीतों की लोकप्रियता आज भी अपने चरम पर होने की एक बेहद ख़ास वजह है। वो वजह है उसका बेहतरीन संगीत, जिसे हर प्रशंसक दिल से अपना कर उसके सुरों में डूब जाते हैं। यही कारण है कि इन गीतों का जलवा दशकों के बाद भी आज कायम है हम सबके दिलों में। समय की दीवारें तोड़कर ये गीत आज भी अपनी खुशबू से सबको ताज़ा तरीन कर देते हैं। आइए सुनते हैं ऐसा ही एक और लाजवाब गीत, जिसे हम शामिल कर रहे हैं अनाड़ी फिल्म से, मुकेश साहब और लता जी के स्वर में।

दो दिलों का मिलना और मुलाकात की खुमारी ऐसी कि मुलाकात के बाद उनकी बातें यादें बनकर एक दूसरे के कानों में गूंजने लगती हैं। उस मुलाकात के बाद क्या हुआ, क्या बातें हुई, अक्सर दिल ये भी भूल जाता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमराही कार्यक्रम में। समय हुआ है 3:37 और 52 सेकेंड। आप हैं हमराही में रूपा के साथ और लुत्फ ले रहे हैं कुछ मधुर से तरानों का। अगला गीत आप सभी के लिए गुमनाम फिल्म से मोहम्मद रफी साहब और शारदा जी की आवाज़ में।

साथियों, फिल्म जगत में प्यार की रोमानियों को दर्शाने के लिए अथक प्रयास किए जाते थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। नायक नायिका जब पेड़ों के इर्द गिर्द झूमते हैं, गाते हैं, तो वो नज़ारा कुछ और ही खास रंगों से भर जाता है। ये नज़ारा दर्शकों को और भी मोहित कर देता है। फिल्म महबूबा का ये गीत लता जी और किशोर साहब की आवाज़ में।

तेरे बिना ये जिंदगी एक उल्फत सी लगती है, तेरे बिना ये जिंदगी एक उल्फत सी लगती है, लम्हे की जुदाई मुद्दत सी लगती है। इतने वक्त बाद मुझे महसूस हुआ कि हर पल तेरी ज़रूरत सी लगती है।

सफर कितना भी लंबा हो, अगर साथ दो दिलों का सच्चा हो तो बातें कभी खत्म नहीं होती। दो दिल एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को, कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं।

तो दूर होकर भी इतना पास लगता है, दिल के हर कोने में तेरा एहसास रहता है। जी हाँ, वैसे हम तो आपके दिल के करीब रहते ही हैं, और इसके लिए हमें और आपको कोई सबूत नहीं चाहिए। जी हाँ, प्यार भरा रिश्ता, सच्चा रिश्ता एक अलग ही दुनिया को कायम करता है। हमराही का सफ़र फिलहाल इतना ही। अभी रूपा विदा लेती है, अरुणिमा के सफ़र पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अब से कुछ ही देर में सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ. वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग आज

0: राष्ट्रीय राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाएगा। दिन भर के इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है ताकि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकें, प्रस्तावित नामों को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति प्रकट कर सकें और अपने विवरण में सुधार करवा सकें। आवेदन लेने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। लोग नया नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6, प्रविष्टि पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और मतदाता सूची के विवरण में सुधार या अपडेट के लिए फॉर्म 8 जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के बारे में मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि चुनाव पंजीकरण अधिकारी मामले की सुनवाई के दौरान नोटिस में शामिल सूची के अलावा अन्य दस्तावेजों पर भी विचार कर सकते हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: सेमिकॉन इंडिया 2026, द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड सक्सेसफुली एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली यस्टरडे। The three-day conference under the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem featured over 600 exhibitors. These included around 300 international participants, representatives from 52 countries and over 150 speakers. The three-day witnessed 56 MOUs, announcements and strategic initiatives spanning semiconductor design, fabrication, advanced packaging, equipment and materials, power electronics and artificial intelligence. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav cautioned that the semiconductor industry should be prepared for cyber attacks and any kind of disruption by countries that do not want India to move up the semiconductor value chain. Talking to a media house in New Delhi yesterday, Mr. Vaishnav said, India has to continuously be watchful of the potential geopolitical risks that will arise because it is now emerging as a country that can design and manufacture chips.
3: There are many challenges. It's a very difficult industry. Such a difficult industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
1: Finance Minister Nirmala Sitharaman attended the concluding session of the first meeting of the Conference of State Finance Ministers and Finance Secretaries of States and UTs. The conference was held on the theme Financing India's Journey Towards Viksit Bharat. The Finance Ministry said in a social media post that the sessions covered key themes such as the macroeconomic outlook, financing agricultural transformation and financing the energy transition. The Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukta Yuva Abhiyan will hold a nationwide youth mobilization drive today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that the Rashtriya Sankalp Samaroh will be organized at 1,067 locations, including 471 district's My Bharat offices and 596 partner organization venues across the country.

तारों की छिटकती चांदनी में अरुणिमा कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। समय हुआ है 4:11 और 25 सेकंड। आप हैं इस सफर में, इस खूबसूरत से सफर में अपनी दोस्त रूपा धवन के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आगाज करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, अब्दुल्ला फिल्म से, जिसे हम शामिल कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के स्वर में।

अरुणिमा में एक नई शुरुआत, ऊर्जावान से भरा उजाला, तैयार हैं हम सकारात्मकता और उम्मीदों का कारवा लेकर। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आइए इसके प्रकाश के साथ मन के हर कोने को खुशियों के उजालों सा प्रकाशित कर दें, ऐसा प्रकाशित कर दें कि ये इतना हसीन लगे कि जिंदगी का रूप ही अलग सा निखर कर आए।

साथियों, हमारे दैनिक जीवन में सकारात्मक सोच का प्रभाव बहुत गहरा असर डालता है। अब सोचिए ना, जब हम किसी भी बात को लेकर मायूस हो जाते हैं, तब किसी का एक ऐसा शब्द या वाक्य हमारी हताशा को एक नई उम्मीद में बदल देता है। फिलहाल आपको सुना रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत लता जी और किशोर साहब के स्वर में, फिल्म दासी।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुणिमा कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं अपने ही मनपसंद चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 4:33 और 57 सेकेंड।

ये सच है कि सबकी चाहत कभी पूरी नहीं होती। ये भी सच है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बस जितना है उसके लिए शुक्रिया और आगे बढ़ने की कोशिश करना ही जिंदगी।

किसी ने खूब कहा है, हर कार्य या हर चाहत मुश्किल ज़रूर होती है, पर मुमकिन जब होती है तो एक अलग ही खुशी का एहसास होता है, और वो खुशियों की बहार होती है समय।

हम लोग जिंदगी में अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य सोच कर रखते हैं कि हमें ये लक्ष्य पाना है, और लक्ष्य जितना बड़ा होगा तकलीफें भी उतनी बड़ी होंगी। इसलिए लक्ष्य से ध्यान ना हटाकर बाधाओं को पार करते रहना ही है, और आगे बढ़ने से हमारी जिंदगी मंजिल पर पहुंच ही जाती है। सुन रहे हैं आप अरुणिमा कार्यक्रम अपनी दोस्त रूपा के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बातें हो रही हैं सकारात्मक विचारों की, जुड़ रहे हैं हम सकारात्मक रूप से इन बातों से, और साथ ही साथ आपको सुनवा रहे हैं कुछ हसीन नगमे।

सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, सच्चाई की डगर माना नहीं आसान, चुनौतियों से हारना ये नहीं हमारी पहचान। जी हाँ, माना कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, पर अक्सर चुनौतियों का सामना करके ही हम आत्मविश्वास, साहस और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सुनते हैं काजल फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर और आशा जी के स्वर में।

मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। जी हाँ, हौसले बनाए रखिए और प्यारी सी एक मुस्कान भी बनाए रखिए जो आपको हिम्मत देगी आगे बढ़ने के लिए। फिलहाल अरुणिमा का सफर यहीं तक, रूपा विदा लेती है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, भोर सुहानी लेकर फिर से आपके साथ रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित और राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग आज राष्ट्रीय राजधानी के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाएगा। दिन भर के इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है ताकि वे मतदाता सूची में नाम जुड़वा सके, प्रस्तावित नामों को जोड़ने या हटाने पर आपत्ति प्रकट कर सकें और अपने निविवरण में सुधार करवा सकें। आवेदन लेने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने पर की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। रेल मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों का में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इससे रेल परिचालन के लिए उपलब्ध सुरक्षा अवसंरचना और मजबूत होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, सुबह का उजाला अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की ज्योत को प्रज्वलित करके सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये महज उजाला नहीं है, जी हाँ। आइए आज की भोर को एक नई उमंग के साथ स्वागत करें।

जीवन पथ पर जीवन की राहें चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर हमारे मन का विश्वास हौसला बुलंद है तो हम दुनिया पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके उदाहरण दुनिया के हर कोने में हैं। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। नमस्कार, सुप्रभात।

जी हाँ, मन की शक्ति और हमारी कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो हम सभी ने सुना है और हम सभी जानते हैं। तो फिर भी हम क्यों इस छोटे से लफ्ज़ को हमेशा भूल जाते हैं? जी हाँ, ज़रा सी कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हम हताश होकर, मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं तो उस मुश्किलों का सामना हम हंसते हुए, खिलखिलाते हुए कर लेते हैं। और फिर उसके बाद तो दिल गुनगुनाने की सदाएं देने लगता है एक नई ऊर्जा के साथ। जी हाँ, भोर सुहानी दस्तक दे रही है, संदेश दे रही है आपको कि भोर हो गई है और अब एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए